भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानी की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानी की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित

0: प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
3: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
4: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के 4 देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमरीका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण

0: संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को यह बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
1: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
2: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
1: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की है।
3: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
1: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
4: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ों में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की डाली स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए चार

0: क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ। 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक। भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Sayura Mujtaba. The headlines. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The president will also honour the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. A report.
3: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

0: voter list case, while the Pioneer says Sonia voter roll row probe revived. The Indian Express informs IIT Mumbai removes professor named in student suicide from dean post, while Hindustan Times says IIT Bombay suspends dean as student stir rages. The Times of India notes grounds in writing a must during arrest even in UAPA, says Supreme Court. The newspaper also writes swept away elephant calf saved by fishermen, adding that the newborn elephant calf had nothing left above water but its trunk. And finally, the Pioneer says, keep faith, drop cruelty. Delhi urges temples to swap live jumbos for mechanical ones. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and NewsOnAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा. आदाब. खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे. वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वेडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की है. बरतानिया ने ईरान की पुष्ट पनाही वाले हौसियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है. और खवातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा. अब खबरें तफसील से. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी. ये अवार्ड देने का सिलसिला 1954 में शुरू हुआ था और ये अवार्ड्स सिनेमा में फीचर, गैर फीचर और कहानी समेत मुख्तलिफ जुमरों में फनकारी और तकनीकी महारत को तस्लीम करते हुए मुल्क के आला तरीन सिनेमा एजाज की नुमाइंदगी करते हैं. इत्तलात नशरियात की वजारत की जानिब से एक बड़े पॉलिसी कदम के तौर पर अवार्ड्स दिए जाने की यह तकरीब कौमी राजधानी से बाहर किसी दीगर रियासत में हो रही है. सदर जमहूरिया मुमताज अदाकार अनंतनाग को 2024 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सरफराज करेंगी. मजीद तफसील हमारे नामा निगार से.
3: तारीखी एकता नगर में रोशनियों के साथ शानदार स्टेज सज चुका है, क्योंकि केवड़िया पहली बार तारीखी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. भारतीय सिनेमा के इस अजीमुशान जश्न के लिए मुल्क भर से नामवर अदाकारों, मारूफ फिल्मसाजों और तकनीकी माहिरीन ने तकरीब का पहुंचना शुरू कर दिया है. ये तकरीब साल 2024 की शानदार सिनेमाई कामयाबियों को सराहने के लिए मुनक़िद की जा रही है. फीचर फिल्मों के अहम ऐलानात में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि यामी गौतम ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा अवार्ड जीता है. बेहतरीन अदाकार का एजाज ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरक तौर पर दिया गया है. राजकुमार पेरास्वामी ने अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड हासिल किया है, जबकि काल्कि 2898 एडी को बेहतरीन मकबूल फिल्म का अवार्ड मिला. रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्रिया वीर सावरकर के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीता. रवि राय मुर्मू ने संथाली फिल्म अंगेन के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर गैर फीचर फिल्म का एजाज हासिल किया. एकता नगर से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद.

0: से मदद तलब की थी। इस साल फरवरी में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज के बाद से जारी जंग के दौरान ये एक नई महाजराई है। आने वाले दिनों में बरतानिया फजा में ही लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने की खातिर एक वॉयजर तैयारा तैनात करेगा। बरतानिया और सऊदी अरब दहाइयों से करीबी फौजी इत्तेहादी रहे हैं और बरतानिया सऊदी अरब को हथियार सप्लाई करने वाले बड़े मुल्कों में से एक है। बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने एक नाबालिग तालिबा के साथ मुबैना छेड़छाड़ और नाशायस्ता बर्ताव के एक वाकये के सिलसिले में तीन मुलजिमों को हिरासत में लिया है। दीगर मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने की कार्रवाई जारी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जमुई के पुलिस सुपरिंटेंडेंट विश्वजीत दयाल ने बताया है कि वायरल वीडियो की तफसीली छानबीन के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।
2: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर तीन लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
1: इधर बिहार के खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन अप्सरा ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि कमीशन की एक टीम बहुत जल्द मुतासरा लड़की से मुलाकात करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगी।
3: पुलिस प्रशासन सभी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने त्वरित गिरफ्तारी की है, और भी गिरफ्तारी हो जाएगी और इस तरीके से जो भी समाज में गलत संदेश देने का काम करेंगे वो दंडित होंगे।
1: खेलों के महकमे की वजीर और जमुई की मेंबर असेंबली श्रेयासी सिंह ने भी इस वाकये की मजम्मत की है और कहा है कि इंतजामिया इस मामले में फौरी कार्रवाई कर रही है।
4: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट भी हो और ये चाहती भी हो कि आगे भी इस गति में कोई कमी ना आए और इसी तरह से कार्रवाई हो।
1: पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: झारखंड में करम त्यौहार आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर झारखंड की कबायली सकाफत और फितरत का जश्न मनाया जाता है और भाई बहन के रिश्ते को याद किया जाता है। इस मौके पर झारखंड में खसूसी सकाफती और रियासती सतह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: करम त्यौहार आज रियासत भर में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार झारखंड की लोक सकाफत का जश्न होता है और इस त्यौहार पर फितरत की पूजा की जाती है। रियासत के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने करम त्यौहार के मौके पर रांची के बेरो में एक प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और रियासत के लोगों को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: जापान में जारी एशियाई खेलों में खवातीन क्रिकेट में भारत सोने के तमगे के लिए फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारतीय खवातीन की टीम बांग्लादेश को 114 रन से करारी शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी, जबकि श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था। भारत ने कल मुख्तलिफ जुमरों में चांदी के 4 और कांसे के 2 तमगों समेत 6 तमगे जीते। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इंफरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लों ने चांदी का तमगा जीता, जबकि रुद्रांश पाटिल को कांसे का तमगा मिला। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
6: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने तिजारत व सनअत के वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदा ATF 20 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है PM सूर्य घर स्कीम के लिए दिल्ली में रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू। रियासतों की इंसदाद मनशियात टास्क फोर्स के सरबराहान की कौमी कॉन्फ्रेंस का आज वजीर दाखला अमित शाह इफ्तिताह करेंगे। अखबार इंकलाब ने केरलम में तोदे गिरने से 9 अफराद की हलाकत की खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्क की कई रियासतों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की खबर भी अखबार में नुमाया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आपने सुना विदुषी उमा गर्ग का गाया राग बैरागी। तबले पर संगत दी थी दुर्जय भौमिक ने, हारमोनियम पर थी प्रमिता मुखर्जी और सारंगी पर एहसान अली। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और दोस्तों आपको बताते हैं 10:10 पे आप सुन पाएंगे अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपकी पसंद। इसमें आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनवाएंगे। और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 2026 को लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत भारतीय मानक समय को देश भर के सभी कानूनी, प्रशासनिक और कमर्शियल कामों के लिए एकमात्र आधिकारिक टाइम रेफरेंस बना दिया गया है। इस वन नेशन वन टाइम के मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें किस किस तरह के क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं, इसके लिए जो तकनीकी और फैसिलिटी कार्यान्वयन किस तरह के किए जाएंगे, इस सब को लेकर के विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं CSIR के नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान, वहां की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम अरोड़ा। पूनम अरोड़ा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले ये जो अभी अधिसूचना जारी की गई है समय को लेकर के, एक देश एक समय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए।
3: जैसा कि आपने कहा कि हम भारत का माप विज्ञान केंद्र हैं, सो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतरराष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है हमारी जो स्पेस एजेंसी है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अब ये जो अधिसूचना है इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है इसका सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पज से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हों। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे, अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड्स कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे, तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका,

0: टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है
1: निश्चित रूप से। और इससे शायद जो मौसम के पूर्वानुमान संबंधी जानकारियां होती है, या इसरो जब कुछ सैटेलाइट छोड़ना चाहता है या कुछ आकलन करना चाहता है, उसमें भी कुछ फायदा और हो सकता है।
0: इसरो पहले से ही जुड़ा हुआ है, अब और बाकी क्रिटिकल सेक्टर्स भी अगर जुड़ जाएंगे और इसी समय को सब लोग फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पे आगे एफिशिएंसी और सिक्योरिटी दोनों ही बेटर होगा।
1: एक है, चूंकि अधिसूचना जारी हुई है, तो इसकी क्या कोई समय सीमा तय की गई है इसे लागू करने की, तो ये क्या है? और दूसरा है कि अगर कोई अधिसूचना के विरुद्ध कोई संस्था या व्यक्ति कार्य करता है, क्या उसमें कुछ जुर्माना या सजा का भी प्रावधान किया गया है? कुछ इस तरह की बात है इसमें?
0: एक तो अधिसूचना में ही लिखा गया है कि 180 दिन का समय दिया जा रहा है। ये इसीलिए है ताकि जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो अपने आप को इससे अवगत करा पाएं, इसमें क्या प्रावधान है उनसे अवगत करा पाएं, और फिर उनको जो भी जरूरतें हैं, जिस एक्यूरेसी से जिसको समय चाहिए, तो उसका वो प्रावधान कर पाएं कि मुझे इस टेक्नोलॉजी से समय लेना है, मुझे अपने कंप्यूटर को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, या मुझे अपने पूरे सिस्टम को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, उसके लिए 180 दिन का समय दिया गया है। अब बात आती है कि इसके लिए जुर्माना क्या होगा। तो हम जो सीएसआर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है, हमारा काम है स्टैंडर्ड बनाना, तो हम समय को निर्धारित करते हैं, हम समय को संजो के रखते हैं, इंटरनेशनल टाइम से हम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम एनफोर्समेंट जो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये उनके अधीन आता है ये कार्य। तो निश्चित तौर पे जब ये गाइडलाइन बनाई जाती है, तो इसके बाद उसका भी प्रावधान किया जाएगा कि किस तरह से इसको चेक किया जाए, तो उसके लिए ऑडिट भी होंगे एंड उसके प्रावधान भी लाए जाएंगे।
1: अंत में जानना चाहेंगे कि एक जब टाइम जोन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे पहले कुछ इस पर जो है तकनीकी कार्यान्वयन या प्रैक्टिस की गई होगी, तो वो किस तरह का था? खास करके जो बेंगलुरु फैसिलिटी और तकनीकी जो कार्यान्वयन है, जैसे चर्चा आई है कि एक व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी या NAVIC का उपयोग, तो इसको लागू करने से पहले वहां पे ये चीज की गई थी, मतलब इस पर एक वर्कशॉप या कुछ पूरे जो कार्य किए गए थे, तो उसमें क्या आप लोग, आपकी संस्था जुड़ी हुई थी?
0: जी, अब हर एप्लीकेशन या हर सेक्टर की एक अलग जरूरत है। कुछ लोग मिली सेकेंड एक्यूरेसी से भी काम कर सकते हैं और कुछ लोगों को नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी चाहिए, जैसे कि हमारा जो स्पेस एजेंसी है उसको नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी चाहिए, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से हमसे समय लेते हैं। आम जनता मिली सेकेंड में काम कर सकती है, तो वो इंटरनेट के थ्रू भी ले सकती है। अब कुछ और क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, क्योंकि आप जब समय ले रहे हैं सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से लेते हैं, अगर सैटेलाइट में कुछ बाधा आ गई उसके सिग्नल में, तो आपका लिंक रुक जाएगा। तो अगर आप ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भी लें, तो जो क्रिटिकल सेक्टर है उनके लिए ये ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो टाइम देना, और उससे हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो ये अभी के लिए, जैसे हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क बनाया गया और उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, और ये बताया गया कि हाँ ये संभव है और ये अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और अभी ये है कि आगे आने वाले समय में हम इस नेटवर्क को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं, जिन सेक्टर्स की जरूरत है उनके लिए स्पेशली, बिकॉज इतना आसान नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर आपको जो डेडिकेटेड लिंक चाहिए वो बहुत महंगा भी पड़ता है। तो जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं और जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो अलग अलग माध्यमों से टाइम लेना चाहेंगे, ताकि एक माध्यम में कुछ रुकावट आती है तो दूसरा माध्यम से टाइम मिलता रहेगा, तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरत होगा।
1: स्टैंडबाय अरेंजमेंट्स रखना
0: पड़ेगा। जी जी जी।
1: तो इसके लिए कुछ और लैब्स भी बनाए जाएंगे, क्योंकि CSIR NPL है, तो सबसे उनको जुड़ना पड़ेगा अगर देश के विभिन्न भागों में इस कार्य के लिए अलग अलग लैब बनाए जाते हैं।
0: तो ये अलग अलग लैब ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ये जरूरत जब महसूस हुई कि हमें समय को एक लीगल स्टेटस देना है, तो उससे पहले हमें ये भी निर्धारित करना है कि समय सब तक पहुंच पाए। अब सिर्फ अगर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली से ही सिर्फ समय का प्रसारण होगा, तो शायद उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और इसरो और NPL ने मिलकर के ये कार्य शुरू किया, और 5 लैब्स में ऑलरेडी हमने सेकेंडरी टाइम स्केल्स लगा दिए हैं, और जो कि हमारे भारतीय मानक समय से ही जुड़े हुए हैं, ट्रेसेबल हैं। तो अब ये जो 5 लैब्स हैं, जो कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और फरीदाबाद में बनाए गए हैं, और जो भारतीय मानक समय से जुड़े हुए हैं, यहां से भी अब समय का प्रसारण किया जा सकेगा। तो हमने जो समय की उपलब्धता पहले और ज्यादा सुनिश्चित की है, और वो भी अलग अलग जगह से, सिर्फ एक ही जगह से ना रहे, लोगों के पास माध्यम रहे कि हम अलग जगह से भी ले सकते हैं, और अगर एक जगह कुछ समस्या आती है तो दूसरी जगह से टाइम मिलता रहेगा। तो आप पहले उसको एनफोर्स करने से पहले आप ये तो करेंगे कि सब लोगों के पास उपलब्धता हो समय की, उसके लिए ये कार्य किया गया,
1: ये सारी फैसिलिटी पहले तैयार की गई निश्चित रूप से। और हमें याद है कि पहले हम लोगों का जो समाचार सेवा प्रभाग समाचार देता था, तो उससे पहले 6 बीप आते थे 6 सेकंड के, और उनकी घड़ियां जो है वो आपके प्रयोगशाला के एटमिक घड़ी से जुड़ी हुई होती थी। अब बचपन से हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय भौतिकी

0: योगशाला जो है वो निर्धारण करता है हमारे जो वेट का करता है, टाइम का करता है, साथ ही हमारे मीटर जो लेंथ का भी करता है। इसके साथ बाद में आपकी संस्था ने बहुत सारे केल्विन और वो सब का करंट एम्पियर सब का भी कुछ साल पहले किया है। निश्चित रूप से
1: जी
0: ये वन नेशन वन टाइम, इसका उद्देश्य जैसा कि आपने बताया कि ये एक कोई नया टाइम जोन बनाना नहीं है, बल्कि देश के डिजिटल और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में समय की सटीक और एक समान सिंक्रोनाइजेशन व्यवस्था को लागू करना है। इसके जरिए विदेशी जीपीएस टाइम सोर्स पर निर्भरता भी कम होगी और देश की डिजिटल संप्रभुता व सुरक्षा मजबूत होगी। डॉक्टर पूनम अरोरा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और आपने वन नेशन वन टाइम, इसके जो मुख्य उद्देश्य है, इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, इससे जो आने वाले लाभ हैं, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं रूपाली गायकवाड़ आज आपके साथ स्थिरता और हरित क्रांति के बारे में जानकारी दूंगी। पहली औद्योगिक क्रांति के बाद से ही एनर्जी यानी ऊर्जा ने दुनिया भर में लगातार विकास को आगे बढ़ाया है। 19वीं सदी के मध्य से हाइड्रोकार्बन ईंधन ने औद्योगिक क्रांति की रफ्तार को तेज किया है। हालांकि इनके साथ पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी आई। कोयला और गैस एनर्जी के सबसे सस्ते पारंपरिक स्रोत है, लेकिन ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और जहरीले वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं और हमारे वायुमंडल की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास सीधे तौर पर ऊर्जा के स्रोतों से जुड़ा है। अगर इन पर सही समय ध्यान न दिया जाए तो ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके अस्तित्व के लिए खतरा बनते हैं। हाइड्रोकार्बन ईंधन की जगह लेने के लिए ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा सबसे सस्ता विकल्प है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से न केवल आयात पर निर्भरता कम होती है, बल्कि ऊर्जा की लागत और अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता आती है। आज हरित उद्योग टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। हालांकि इसके लिए हरित उद्योग के प्रति हमारे नजरिए में व्यापक बदलाव की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि ग्रीन इकोनॉमी पर्यावरण पर कम से कम बुरा असर डालते हुए इंसानों की भलाई को बेहतर बनाती है। इंसानी तरक्की को औद्योगिक क्रांति से पहले के दौर में वापस तो नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार विकास के लिए साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए हमारा मुख्य मकसद कई तरह के साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों के साथ देश में टिकाऊ विकास करना है। हरित उद्योग को ऐसे आर्थिक विकास की तलाश करनी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। इसका समाधान है सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा के असीमित स्रोतों का इस्तेमाल करना, साथ ही मौजूदा संसाधनों को ज्यादा कुशल बनाना और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग करके सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना। ऐसी उत्पादन प्रक्रियाएं विकसित करना जिनसे कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन पदचिन्ह कम हो, ऊर्जा की बचत हो और कचरा कम निकले। इसके अलावा समाधान प्राकृतिक सामग्रियों को अपनाने और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग के लिए क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन बनाने में भी है। औद्योगिक क्षेत्र में टिकाऊपन की ओर बदलाव भारत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करने वाला ग्रीन सीमेंट क्लिंकर यानी धातुमल उत्सर्जन को कम कर रहा है। सरकार तेजी से नीतियां लागू कर रही है और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और उसे अनिवार्य बना रही है। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी ग्रीन हाइड्रोजन और बायोब्लेंडेड फॉसिल फ्यूल के जरिए नेट जीरो का लक्ष्य बना रहा है। सरकार ने ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए रीस्किलिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। रीस्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स को नई स्किल सिखाने में कर्मचारियों को एनर्जी मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी के तरीकों और डिजिटल तरीके से वेस्ट कम करने का प्रशिक्षण देना शामिल है। इन प्रोग्राम्स का मकसद टेक्निकल और सिस्टम्स की समझ से जुड़ी स्किल्स को बेहतर बनाना है ताकि कर्मचारी कम कार्बन उत्सर्जन वाली मशीनें चला सके, सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल कर सके और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन कर सके। रणनीतिक स्तर पर यूएन 2035 तक उत्सर्जन में 55% की कटौती करने और 2050 तक वैश्विक स्तर पर नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने का समर्थन करता है। पेरिस समझौते का नेट जीरो लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय उष्मीकरण को प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित करना है। 130 से ज्यादा देशों ने नेट जीरो लक्ष्य अपनाए हैं, जिन्हें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह सोलर और विंड जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके और साथ ही पेड़ पौधे लगाकर और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर हासिल किया जाना है। इस रणनीति की सहायता करने के लिए नई नेट जीरो टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से प्रति अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तेजी से आर्थिक

0: विकास के साथ पर्यावरण को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का प्रकल्प किया है। तब तक भारत में ज्यादातर आधुनिकीकरण का काम पूरा हो चुका होगा। एक अहम पड़ाव के तौर पर भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट की फॉसिल फ्यूल मुक्त ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिससे अपनी ऊर्जा जरूरत का 50% हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से पूरा किया जा सके। इसके लिए जिन क्षेत्रों पर काम करने की योजना है उनमें कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पेड़ पौधे लगाना, कार्बन हटाने वाली टेक्नोलॉजी और तरीकों का इस्तेमाल करना और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए प्रयास करना शामिल है।
1: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: All right.

يد الله.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट

0: should be met with the smallest possible quantum of water.
1: These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
2: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र के 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force ANTF heads of states and UTs in New Delhi. The two-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and union territories are attending the conference being organized by the Narcotics Control Bureau, NCB. Based on the theme of the United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on progress of targets assigned to states and UTs.

0: London.
1: नमस्कार साथियों, दोपहर की इस घड़ी में जब सूरज ठीक सिर के ऊपर लगता है और हवा का रुख बदलने लगता है, तब यही वो समय होता है जब हम एक दूसरे के आसपास बैठते हैं, बातें करते हैं और दिन को थोड़ा हल्का बनाते हैं। आप सुन रहे हैं घर आंगन, मैं हूँ श्रुति पुरी और ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है FM गोल्ड की 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल से ये कार्यक्रम मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो हमें YouTube चैनल AIR न्यूज़ लाइव 24x7 पर भी सुन सकते हैं। और अब एक छोटा सा रोचक सा प्रश्न आपके लिए। हम सबके घरों में कोई ना कोई ऐसी एक छोटी सी आदत या नुस्खा ज़रूर होता है जो दादी नानी या माँ से हमें विरासत में मिलता है। हो सकता है वो चाय बनाने का कोई ख़ास तरीका हो, या फिर मौसम बदलने पर कोई घरेलू नुस्खा, या फिर कोई ऐसी बात जो घर के बड़े अक्सर दोहराया करते हैं। आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी एक आदत या नुस्खा है जो आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अपना जवाब हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। ईमेल आईडी दोबारा सुनिए fmgoldga@gmail.com। और आपके भेजे किससे हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का दिन जिस महान व्यक्तित्व की जयंती का है वही आज के सुविचार की प्रेरणा भी हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव वलंगईमान में जन्मे भारत के महान समाज सुधारक और कूटनीतिज्ञ V.S. श्रीनिवास शास्त्री की आज जयंती है। शास्त्री जी सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक बेहतरीन वक्ता और मध्यस्थ भी थे। विदेशों में बसे भारतीयों की सेवा के लिए भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे थे सच में एक प्रेरक व्यक्तित्व। V.S. श्रीनिवास शास्त्री जी का एक सुविचार आज के लिए। शास्त्री जी कहा करते थे कि हमारा काम सिर्फ अपनी पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम की चिंता मत करना, ये हमारा काम नहीं है। यानी मेहनत और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाइए और नतीजा अपने आप संवर जाएगा।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे गीता मेरा नाम फिल्म में। तो दोस्तों अब चलते हैं देश के उत्तर पूर्व की ओर मणिपुर में। मणिपुर में एक अनोखा उत्सव आज के दिन मनाया जाता है जिसे हेइक्रो हिडोंगबा कहते हैं। ये मणिपुर का प्रसिद्ध नाव उत्सव है। ये मणिपुर कैलेंडर के लागबन माह के 11वें दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत महाराजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुई थी। इम्फॉल के जो विजय गोविंदा मंदिर के पास बनी खाई है उसमें दो लंबी नावों के बीच ये दौड़ होती है और इससे पहले भगवान विष्णु और विजय गोविंदा की पूजा अर्चना भी की जाती है। दौड़ के दिन 108 आंवलों की माला और 108 चावलों के दाने जो होते हैं उसकी एक और माला भगवान को अर्पित की जाती है। सदियों बाद भी ये परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आज ही डोल 11 मनाई जा रही है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये पर्व मनाया जाता है जिसे परवर्तिनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भगवान कृष्ण की मूर्ति को सुंदर डोल यानी झूले में सजाकर पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और जहाँ नदियाँ हैं वहाँ नौका विहार कराया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरा माहौल अब भक्तिमय हो जाता है और इसी भक्ति को समर्पित है ये गीत।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब सूरज खुद ही दिन और रात को आधा आधा बांट देता है? जी हाँ, आज के दिन शरद विषुव यानी ऑटम इक्विनॉक्स है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, और ये आज या कल के दिन के बीच में ही होता है। ये वाकई प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। साल में ये सिर्फ दो बार होता है, जब सूर्य की किरणें धरती के भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और दुनिया के हर कोने में दिन और रात की लंबाई लगभग समान हो जाती है।

है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे रातें लंबी होने लगती हैं, सर्दियों की आहट शुरू हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खाली खगोलीय घटना नहीं है बल्कि एक सीख भी है। जैसे दिन और रात का संतुलन जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में भी काम और आराम का संतुलन भी बना रहना चाहिए। हमारे पुरखे भी मौसम के इस बदलाव को बहुत बारीकी से देखते थे और अपने खान पान और दिनचर्या को उसी हिसाब से ढालते थे। तो चलिए आज सूरज की इस सीख को अपने जीवन में भी उतारते हैं और अपने दिन में भी काम और आराम का हिसाब उतना ही बराबर रखने की कोशिश करते हैं जितना आज प्रकृति ने खुद बना दिया है।

अक्षा भोसले को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी सच्चाई। और श्रोताओं, अब वो बात जो मेरा पसंदीदा सेगमेंट है इस प्रोग्राम का, वो ये कि जब मैं आप लोगों की मेल पढ़ती हूँ, आप लोगों के किस्से सुनती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, रोचक बातें सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ आपको भी उतना ही पसंद आता होगा। तो आज की इस मेल जो हमारे पास आई हैं उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न था कि ऐसी कौन सा नुस्खा या ऐसी कौन सी बात है जो दादी नानी के ज़माने से अब तक चली आ रही है, घर के बड़े अभी तक उस बात को बार बार दोहराते हैं और आप और आपके आने वाली पीढ़ी में भी वो विरासत के तौर पर पहुंच रही है। तो वो प्रश्न का उत्तर सबसे पहले हमें भेजा है नवीन भाटिया जी ने, मोती नगर दिल्ली से। ये लिखते हैं, घर आते ही सीधा पानी ना पीने की बजाय कुछ बिस्किट वगैरह खाकर ही पानी पीना चाहिए और यही वो आदत है जो हमारे घर में बरसों से चली आ रही है। और मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी आदत है और ये हमारे जैसे कई घरों में ये आदत आज भी अपनाई जाती है। और पंकज बिंदल जी का ये बेल हमें आया है, लिखने वाले हैं राजू अग्रवाल जी चौधरीवास से, पंकज बिंदल जी, केशव, प्रयाग, प्रयांशी और विवेक। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, हमारे घर में पूर्वजों के समय से ही घर पे आने जाने वाले का बहुत आदर किया जाता था। मेहमानों को हम भगवान की तरह मानते हैं। आप भी कभी आइए, हमारे आकाशवाणी के सभी परिवार को ये सादर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार राजू अग्रवाल जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारी जो भारतीयों की ये परंपरा भी है कि हम जब घर में कोई अतिथि आता है तो उसको देव समान मानते हैं, नारायण मानते हैं, भगवान मानते हैं। और एक मेल हमें आया है अफरोज़ शेख जी का, ये सोपुला बिहार से लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि सत्तू को पानी में घोलकर हमारे घर में पिलाया जाता था और चुकंदर का छिलका पानी में उबालकर जो उसका पानी छाना जाता था उसमें नींबू निचोड़कर अगर हम पीते थे तो हमारे घर में सभी कहते थे कि चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताया आपने अफरोज़ जी, ये तो हम सभी के काम का नुस्खा है। और सत्तू को तो सुपर फूड भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं और घर में बुज़ुर्ग इस तरह की चीज़ों की आदत अक्सर ही डाल दिया करते थे। एक और मेल हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी जी का, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जी का, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बड़ों की शिक्षा है कि हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, आपका जीवन मंगलमय हो। ये आपका मेल आया है सुदर्शन मुखी जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कुछ घरों में ये बात आज भी कही जाती है कि सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। और ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्राणवायु को अपने अंदर ले पाते हैं। तो एक मेल और आया है हमारे पास, ये मेल हमें लिखा है गौरी शंकर जी ने नांगलोई दिल्ली से। ये लिखते हैं कि राम राम, हमारे जो दादी दादा और नानी नाना का जो कहना था वो ये था कि जो तजुर्बा वो हमें सारी जो हम ग्रहण करते हैं दादा दादी और नाना नानी का जो अनुभव हम लेते हैं वो हमें सारी ज़िंदगी काम आता है। कई बार मैं काम में परेशान हो जाता था तो मेरी दादी कहा करती थी कि ये एक ज़िंदगी का तजुर्बा है जो तुम्हें अपने जिसमें तुम्हें पास होना है, फेल नहीं होना है। और वो इतनी हिम्मत बढ़ाती थी
काम में सफलता मिलती थी, और आज भी जब भी मुझे कभी भी मैं परेशान होता हूँ तो मुझे उनकी ये सारी बातें याद आती हैं। ये तो एक बहुत ही प्रेरक बात है गौरी शंकर जी, क्योंकि घर में जितने भी

लंबा जाम और धुएं से भरी हवा। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या जयपुर, हर शहर की सुबह अब कुछ ऐसी ही होती चली है। और शायद इसीलिए आज का दिन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हर छोटे से छोटे काम के लिए गाड़ी निकालना वाकई ज़रूरी है। आज विश्व कार मुक्त दिवस है, जिसका मकसद बस इतना सा है कि साल में कम से कम एक दिन हम अपनी गाड़ी को आराम दें और पैदल चलें, साइकिल उठाएं या मेट्रो या बस से सफ़र करें। हमारे यहाँ तो ये बात और भी मायने रखती है। शहरों में बढ़ते वाहन सबसे बड़ी वजह हैं उस प्रदूषण की, जिससे हम हर सर्दी में जूझते हैं। और मज़े की बात ये है कि हमारे शहरों में आज भी ज़्यादातर सफ़र छोटी दूरी के होते हैं। सब्जी लेने जाना हो, बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ना हो या पास के बाज़ार तक जाना हो, ये सब तो पैदल भी हो सकता है। बस इतना है कि आदत छूट गई है। और सच कहूँ तो जब सड़कों से गाड़ियों का शोर कम होता है तो वही सड़कें अपना स्वरूप बदल लेती हैं। बच्चों को खेलने की जगह मिल जाती है, पड़ोसी रास्ते में रुककर एक दूसरे का हाल पूछ लेते हैं। हम में से कितने ही लोग होंगे जिनको अपने बचपन के वो मोहल्ले याद होंगे जहां गलियां गाड़ियों से नहीं बल्कि हंसी के ठहाकों से भरी होती थी। तो क्यों ना आज एक छोटी सी कोशिश करें, एक काम ऐसा चुनिए जो बिना गाड़ी के आप कर सकें। हो सकता है कि उस थोड़े से पैदल रास्ते में आपको अपना वही पुराना मोहल्ला फिर से मिल जाए।

लोफर फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। श्रोताओं, सुबह घर से निकलिए तो हॉर्न की आवाज

दोस्तों, शायर कमर जलालवी का एक मशहूर शेर है कि तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो, तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो। फूलों को तो देखो, कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। बरसों पुराने इस एक शेर में शायद पूरे गुलाब की कहानी छुपी है। हम सब गुलाब को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इस गुलाब की कहानी उससे भी कहीं गहरी है। गुलाब जितना कोमल दिखता है, उतना ही मजबूत भी होता है। सोचिए, एक नाजुक सी पंखुड़ी कांटों के बीच खिलती है और फिर भी अपनी खुशबू और अपना रंग नहीं छोड़ती। ये अपने आप में हिम्मत की मिसाल है। जीवन में भी तो यही होता है। मुश्किलों के कांटों के बीच ही तो इंसान का असली रंग निखरता है। जो व्यक्ति हर मुश्किल के बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ता, वही तो असली गुलाब है। और गुलाब तो कई तरीके की दवाइयों और सुगंध में भी काम आता है। गुलाब के इतने उपयोग हैं कि उनको उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। यही वजह है कि आज गुलाब सिर्फ प्रेमियों के बीच नहीं, बल्कि योद्धाओं के बीच भी उतना ही सुंदर लगता है। ये प्यार की भाषा बोलता है और हौसलों की भी, और शायद यही कारण है कि गुलाब हर मौसम, हर मौके पर अपनी जगह बना ही लेता है।

बीवी हो तो ऐसी। इस फिल्म में अभी आप अनुराधा पौड़वाल और मोहम्मद अजीज को सुन रहे थे। श्रोताओं, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि हाथ में कोई रैपर या पन्नी हो और आसपास कोई डस्टबिन ना दिखे तो बस वहीं ज़मीन पे डाल दिया? सच कहूँ तो ये आदत इतनी आम हो चुकी है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम अपने घर में कागज़ का टुकड़ा भी फर्श पर नहीं गिरने देते, लेकिन बाहर निकलते ही वो सतर्कता कहीं गुम हो जाती है। जिसका एक छोटा सा हल है, बस एक इतना सा हल है कि बस उस पन्नी या रैपर को जेब में या बैग में रख लीजिए और अगला डस्टबिन मिलने तक उसमें डाल दीजिए। ना कोई मेहनत, ना कोई खर्चा, बस सिर्फ एक आदत जो थोड़ी सी सजगता मांगती है। और सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ इतना ही कर ले तो हमारे पार्क, बाजार, रेलवे स्टेशन कैसे बदल जाएंगे? सफाई एक कर्मचारी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो हर उस हाथ की जिम्मेदारी है जो कचरा पकड़े हुए है। तो अगली बार जब हाथ में कुछ फेंकने लायक हो तो एक पल रुकिए, डस्टबिन तक का छोटा सा सफर पूरा कीजिए और देश की सेवा में जुड़िए।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी बहारों के सपने। तो दोस्तों, आज की ये 50 मिनट की सोहबत भी अब अपने आप में एक पूरा सफ़र बन चुकी है। कुछ बातें दिल को छू गईं, कुछ ने सोचने पर मजबूर कर दिया और कुछ ने बस यूं ही होठों पर मुस्कुराहट ला दी। सच कहूँ तो ये बातचीत की यही तो खूबसूरती थी कि हम हमेशा अपने बातचीत के पीछे कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, कोई ख्याल, कोई एहसास जो शायद फिर याद आ जाता है। तो जब भी ऐसा हो तो समझिए कि हम आपके साथ हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइएगा, और हाँ, अगली बार फिर मुलाकात होगी तो श्रुतिपुरी को दीजिए घर आंगन से अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का

0: विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the 3rd National Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, of States and Union Territories in New Delhi today. The 2-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and UTs are attending the conference, which is being organized by the Narcotics Control Bureau. Based on the theme of United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on the progress of targets assigned to task forces of states and UTs in the recently released Vision Document on Narcotics Control 2026-29. The Union Home Ministry said the central government is working in mission mode to protect the nation's youth from the adverse effects of drug abuse. Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi today. Speaking on the occasion, he stressed the judicious use of water.

कितना खूबसूरत है ना ये गीत। इस गीत के शब्दों में जैसे 50 के दशक के सिनेमा की पूरी मासूमियत समाई हुई है। इस गीत को लता मंगेशकर ने आवाज़ दी थी और संगीतकार थे हेमंत कुमार, गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे। हेमंत कुमार का संगीत अपने आप में एक खास पहचान रखता था, सादगी, मिठास और धुन में ऐसी सहजता कि गीत सुनते हुए लगता था कि जैसे धुन बहुत पहले से हमारे भीतर कहीं मौजूद थी। फिल्म में थे भारत भूषण, सुचित्रा सेन, प्राण, शोभा खोटे, मुबारक, एस एल पुरी और मुमताज बेगम जैसे कलाकार। फिल्म का निर्देशन किया था नंदलाल जसवंत लाल ने। फिल्म की कहानी एक बंजारा कबीले के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें बांसुरी की धुन, प्यार और सांप के काटने जैसे ड्रामेटिक ट्विस्ट शामिल थे। आपको बता दें कि निर्देशक नंदलाल इससे पहले नागिन, अनारकली, सनम, आम्रपाली जैसी हिट फिल्में दे चुके थे।

0: गाना चांद का ये टुकड़ा छुपाए थे।
1: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपाए थे,
0: छुपे गाना चांद का ये टुकड़ा छुपाए थे, ये चांद का टुकड़ा छुपाए थे।

चंपा कली को 1957 की हिंदी फिल्मों की सूची में रोमांटिक फिल्म के रूप में दर्ज किया गया। फिल्म में भारत भूषण ने माधो और सुचित्रा सेन ने राजू की भूमिका निभाई। भारत भूषण उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिनके अभिनय में रोमांस के साथ साथ एक नरम भावनात्मक रंग दिखाई देता था। दूसरी ओर सुचित्रा सेन भारतीय सिनेमा, खासकर बंगाली सिनेमा की बेहद महत्वपूर्ण अभिनेत्रियों में उनका नाम लिया जाता है। उनके करियर का दिलचस्प पहलू ये भी है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत अधिक काम नहीं किया, लेकिन जिन फिल्मों में नजर आई उनमें उनकी स्क्रीन उपस्थिति अलग ही दिखाई देती थी। चंपा कली में उनका किरदार राजू का था। यही वजह है कि आज जब हम इस फिल्म के गीत सुनते हैं तो वे सिर्फ पुराने गीत नहीं लगते, वे हमें सुचित्रा सेन, भारत भूषण के उस दौर की सिनेमाई जोड़ी की याद दिलाते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है चंपा कली और कार्यक्रम के साथ मैं हूं अर्चना गोयल।
1: Hey guys! Hey, आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, चंपा कली से जुड़ी एक ऐसी जानकारी जो इस फिल्म के संगीत को और रोचक बना देती है। फिल्म में ओ ग्वालिन क्यों मेरा मन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है। इस गीत को लेकर पुराने गीत संग्रह में एक दिलचस्प टिप्पणी मिलती है कि इसे भारत भूषण और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया। इसे सुनकर यह बात खास तौर पर ध्यान खींचती है कि भारत भूषण के लिए इस फिल्म में हेमंत कुमार की अपेक्षा रखने वाले श्रोताओं को यहाँ रफ़ी साहब की आवाज़ सुनाई देती है। यही पुराने सिनेमा का आकर्षण है। ये भी गौर करने वाली बात है कि हेमंत कुमार के संगीत में अलग अलग भावों को अलग अलग गायकी के रंग से सजाया गया।

मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए इस खूबसूरत गीत के बाद अब बढ़ते हैं आप सब के मैसेजेस पर। हमें बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं और अब बढ़ते हैं मेल्स की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह का। और आप हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पीपरिया से आप हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और शिप्रा गुप्ता। पलारी छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निर्मित आहूजा। और ये हैं फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी, दिवांशी, वाणी खेड़ा और आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और उनके परिवार के सभी लोग। और ये मैसेज हमें भेजा है ग्राम नाहर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांचल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। आपके साथ ही हैं जग्गा राम साहू और ये लिख रहे हैं कि फिल्म चंपा कली की मधुर सदाबहार गीत संगीत कहानी और फिल्म से जुड़ी रोचक बातों का आनंद ले रहे हैं और प्रोग्राम की शानदार मनभावन लाजवाब पेशकश के लिए इन्होंने हमें बधाई दी है। तो जग्गा राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और हमसे जुड़े हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और ये लिख रहे हैं कि आज की फिल्म चंपा कली की कहानी सुन रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है जो जानकारी आप दे रहे हैं। तो राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अली खान हमें मैसेज कर रहे हैं लेकिन इनका पता नहीं है कि ये कहाँ से हमें मैसेज कर रहे हैं। और आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव और ये लिख रहे हैं कि चंपा कली की बारे में सुंदर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छेपा, कपिल छेपा, ईशान छेपा और पूजा परिहार और ये लिख रहे हैं कि आज आप चर्चा कर रहे हैं फिल्म चंपा कली के बारे में, बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से, कहानी और नगमे भी सुनवा रहे हैं, बेहतरीन जानकारी हमें मिल रही है, गीत छुप गया कोई रे बहुत सुना चाहता है, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और अब बढ़ते हैं फिल्म की तरफ। चंपा कली की चर्चा हेमंत कुमार के बिना अधूरी है। उन्होंने फिल्म का संगीत तैयार किया, गीतों में विरह, प्रेम, सावन, शरारत, भक्ति, कई अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। जरा कल्पना कीजिए 1957 का समय, न आज जैसे रिकॉर्डिंग तकनीक, न डिजिटल एडिटिंग, न ऑटोट्यून, फिर भी आवाजों में जो गर्माहट थी वो आज भी कानों से सीधा दिल तक पहुंचती है।

और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है बिरम घाट गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार का। ये लिख रहे हैं कि इस फिल्म में दिग्गज संगीतकार रवि की शुरुआत हुई। इस फिल्म का मुख्य संगीत मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार ने दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में उनके असिस्टेंट सहायक के रूप में रवि काम कर रहे थे। रवि ने बाद में चलकर हिंदी सिनेमा को स्वतंत्र रूप से चौदहवीं का चांद और वक्त जैसे ढेरों यादगार गाने दिए। फिल्म में महान अभिनेता प्राण ने वीरा नाम के विलेन का किरदार निभाया था, जो बाद में कहानी में लव ट्राइंगल और ड्रामा पैदा करता है। तो अजीत जी, आपने ये बहुत सुंदर जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज हमें मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष। आप हैं फारूक अली खान, इनका भी जगह का नाम नहीं मालूम चल पाया है। और आप हैं मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गॉड, और इनको गाने और कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं। दिग्दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पलारी से आप हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा। खजाना गेट अमृतसर से आप हैं प्रेम सागर और शुभलता। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान। भबलपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और नेहा जगदीश देवांगन। गुरमी सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक कुमार सहगल। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दी।

और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों, चंपा कली के गीतों की सूची पर नज़र डालें तो हमें एक दिलचस्प बात दिखेगी, वो है अलग अलग भाव यानी विविधता के गीत। कहीं मन की उमंग, कहीं इंतजार और पुकार, कहीं सावन और प्रेम, शरारत के साथ कृष्ण भक्ति और भक्ति का रंग। एक ही फिल्म में संगीत के इतने अलग अलग भावों का होना उस दौर के फिल्म संगीत

तो दोस्तों, 1957 की फिल्म चंपा कली हमें सिर्फ एक फिल्म की याद नहीं दिलाती, हम उस दौर के फिल्म संगीत की एक झलक देखते हैं, जबकि इस कहानी का हिस्सा हुआ करते थे, जब राजेंद्र कृष्ण जैसे गीतकार शब्दों से दृश्य रचते थे और हेमंत कुमार उन शब्दों को धुन देते थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और हेमंत कुमार जैसे गायक उन भावनाओं में आवाज़ भर देते थे। शायद 6-7 दशक गुजर जाने के बाद भी जब कोई गीत रेडियो पर कहता है छुप गया कोई रे, तो हमारे भीतर कोई पुरानी खिड़की खुल जाती है। तो ये था हमारा आज का एक ही कलाकार एक ही फिल्म से कार्यक्रम। फिलहाल अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने नवी दिल्ली च 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का आगाज किया। पानी की सूझबूझ नाल वरतो ते संभाल ते दिता जोर। गृहमंत्री अमित शाह वालों अज नवी दिल्ली च पंजाब समेत 36 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे नशा विरोधी कार्जबलां दे मुखियां दी तीजी राष्ट्रीय कांफ्रेंस का उदघाटन। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी दे 650वें प्रकाश पुरब नूं मनाउण लई 30 नवंबर तो 4 शोभा यात्रावां कढ़न दा कीता फैसला। एशियाई खेडां च भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट दे फाइनल मुकाबले च श्रीलंका नूं 147 दौड़ां नाल हरा के सोने दा तमगा अपने नाम कीता। भारतीय सिनेमा विच इक नवा अध्याय सिरजते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। साल 1954 च स्थापित पुरस्कारां नूं भारतीय सिनेमा दे सर्वोच्च सम्मानां विचों इक मन्निया जांदा है, जो फिल्म, फीचर फिल्मां, गैर फीचर फिल्मां ते सिनेमैटोग्राफी समेत वख वख श्रेणियां च कलात्मक ते तकनीकी उत्तमता नूं मानता दिंदे ने। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दी इक नवीं नीति दे हिस्से वजों पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी तों बाहर प्रदान कीते जा रहे ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत दे दृष्टिकोण नूं दर्शाउंदे होए एकता नगर विखे समारोह च देश भर दीआं सिनेमैटिक प्रतिभावां शामल होणगीआं। राष्ट्रपति तजुर्बेकार फिल्म अदाकार अनंत नाग नूं साल 2024 लई दादा साहब फालके पुरस्कार वी प्रदान करनगे। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने अज नवी दिल्ली च

0: The storms, lightning and squally winds are also likely during this period under the influence of the deep depression. The IMD has also issued an orange warning for vulnerable districts and warned of squally winds along the South Odisha coast. The state government has kept shelters, rescue teams and machinery ready and directed district administrations to closely monitor vulnerable areas. All schools and Anganwadi centers in several districts have been ordered closed from today for 3 days as a precaution. Fishermen have also been advised not to venture into the sea. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Heavy rain will continue in Madhya Pradesh for the next few days. The weather department has issued an alert for several districts. A report.
2: Spell of heavy rain will begin in Madhya Pradesh from 23rd of September. According to the weather department, the system will be more active on 24th and 25th of September. In next 2 days, heavy to very heavy rain is likely in 17 districts. Jabalpur, Rewa, Shahdol and Sagar divisions will be affected the most. Bhopal and Narmadapuram divisions are also on alert. The weather department says a low pressure area is behind this. The state has received an average of 33.7 inches of rain so far. The southwest monsoon will start withdrawing from the last week of September, but heavy rain is expected before that. Abhinav Goyal, Akashvani Samachar, Bhopal.
1: In women's cricket, India thrashed Sri Lanka to win the first ever gold medal in the final in Asian Games 2026 at the Aichi Prefectural Korogi Sports Park, Japan. Sri Lanka were bowled out for just 69 in 15.4 overs, as India completed a comprehensive victory by 147 runs. Batting first, India posted a commanding 216 for 3 in 20 overs. And India's women's opener, Smriti Mandhana, created history as she became the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti made the record during the Asian Games final against Sri Lanka in Nishin. Mandhana smashed 3 sixes and 3 fours in the first 4 overs to get India off to a blistering start. She surpassed former Indian captain Mithali Raj's record of 10,868 runs across all formats. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep performance-linked incentive scheme in abeyance. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया।

0: राष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स एक्सपर्ट्स एंड stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
5: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि

0: फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
1: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
3: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
2: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
4: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
5: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
4: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्सपर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए न्यूज

0: newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
2: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। आईएमडी ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3rd राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ एक्ट्रेस ऐसी रहीं जिन्होंने बहुत कम समय में दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। इनकी खूबसूरती के साथ इनकी मासूमियत, एक्टिंग की सहजता और पर्दे पर दिखाई देने वाली सादगी इन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती थी।

जी हाँ दोस्तों, ये सॉन्ग को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे आज हम किस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं। ये एक्ट्रेस थी रंजीता कौर। आज ही के दिन यानी 22 सितंबर 1956 को पंजाब में जन्मी रंजीता कौर के पिता गवर्नमेंट अफसर थे और माँ हाउसवाइफ। इनकी पढ़ाई शिमला के गवर्नमेंट स्कूल में हुई। बेहद कम उम्र में ही इन्होंने हीरोइन बनने के

सपना देख लिया था। इसी वजह से अपनी एजुकेशन पूरी करते ही ये पुणे चली गई और यहाँ आकर इन्होंने FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स किया। और किस्मत देखिए, कोर्स पूरा करते ही इन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई और रच दिया इतिहास। आकाशवाणी की तरफ से रंजीता जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। इनकी लाइफ के अनसुने किस्सों के बारे में आगे हम जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म आँखियों के झरोके से का ये शानदार सा गीत।

तो आज हम बात कर रहे थे एक्ट्रेस रंजीता कौर जी की। 1976 में इनके करियर की दिशा बदल गई। डेब्यू फिल्म थी लैला मजनू, जिसमें इनके साथ ऋषि कपूर ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म के बाद इनके लिए फिल्मों के दरवाजे तेज़ी से खुलने लगे और फिर आया वो दौर जब रंजीता कौर का नाम लगातार बड़ी फिल्मों के साथ जुड़ने लगा। फिल्म लैला मजनू के बाद इनकी दो ऐसी फिल्म आई जिन्होंने इन्हें दर्शकों के बीच मजबूत पहचान दिलाई। पहली थी आँखियों के झरोखों से, जिसमें इन्होंने सचिन पिलगांवकर के साथ काम किया, और दूसरी फिल्म थी पति पत्नी और वो, जिसमें संजीव कुमार जैसे अनुभवी अभिनेता के साथ काम किया। दोनों ही फिल्मों के लिए इन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। 70 के दशक के आखिरी तक रंजीता एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी थी जिनके नाम से दर्शकों को एक खास तरह की फिल्मों की उम्मीद होती थी, रोमांटिक, भावनात्मक और पारिवारिक कहानियाँ। इन्होंने ऋषि कपूर, सचिन, संजीव कुमार, राज बब्बर, राज किरण, विनोद मेहरा, अमोल पालेकर और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन इनकी एक ऐसी ऑन स्क्रीन जोड़ी बनी जिसे हिंदी सिनेमा के दर्शक लंबे समय तक याद रखने वाले थे। उसके बारे में भी हम जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म का ये गीत जिसको हमने लिया है फिल्म आदत से मजबूर फिल्म से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं रंजीता कौर, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, 80 का दशक रंजीता कौर के फिल्मी करियर का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय था। इस दौर में इन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया और अलग अलग तरह के किरदारों को निभाया। रंजीता ने अपने समय के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनकी जोड़ी खास तौर से फेमस हुई। दोनों ने सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, घर एक मंदिर, बाजी और गुनाहों के देवता जैसी कई फिल्मों में के साथ काम किया। फिर 1942 में आई फिल्म सत्य पे सत्ता भी इनके करियर की चर्चित फिल्मों में शामिल रही। फिल्म में ये अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई, लेकिन हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब वो अपने करियर की रफ्तार से अलग जिंदगी के दूसरे पहलुओं को प्राथमिकता देता है। रंजीता के जीवन में भी एक ऐसा ही समय आया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये बेहतरीन सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रंजीता कौर की और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। किसी कलाकार के लिए कैमरे से दूर होना आसान फैसला नहीं होता, लेकिन जिंदगी सिर्फ फिल्मों का नाम नहीं है। एक्ट्रेस रंजीता ने अपने फिल्मी करियर के एक महत्वपूर्ण दौर के बाद एक्टिंग से दूरी बनाई। 1990 में फिल्म गुनाहों के देवता इनके शुरुआती फिल्मी दौर की अंतिम फिल्मों में शामिल रही। इसके बाद इन्होंने कुछ टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स जैसे अजूबे साहिल और घुटन और नूरजहां में भी काम किया, पर इनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा परिवार और निजी ज़िंदगी को समर्पित रहा। रंजीता ने बिजनेसमैन राज मसंद से शादी की और इनका एक बेटा स्काई है। फैमिली के साथ इन्होंने अमेरिका में भी कुछ समय बिताया। बाद में फैमिली पुणे में आकर रहने लगी। बावजूद इसके कि रंजीता जी के लिए सिनेमा भी इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा और यही वजह है कि 15 साल बाद इन्होंने कमबैक किया। इनकी कमबैक स्टोरी भी जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म जुल्म की पुकार का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे कुछ प्यारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनका भी नाम पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से है मोहम्मद खतीजा बेगम, मोहम्मद असफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं गोत्र गोट कारची से अमर रमेश कुमार, टेलर मास्टर किशन लाल और जफर सादिक, और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुरावाला से स्वर्णजीत गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुन्नूर गुलाल और अविराज सिंह, और संदीप जी, ज्योति, मन्नत, भारत, सहानी, पिंगावाला चौक, जालंधर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और ये हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से तुलसी, वीना, डब्बू, चैतन्य, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान, और ये हैं वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, और ये सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत। और आगे चलते हैं, ये है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग, अशोक कुमार सहगल, और आगे हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, और मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से सैयद मंसूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम और फारूक अली खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी, और आगे चलते संबल कांकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जैसे जयवीर, जस्सी, सीता और गीता भी हमारे साथ है। भंवरपुर बसाना से राधेश्याम देवगन, चंपा, जगदीश देवगन जी हैं। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और अब बात करते हैं रंजीता जी की। 15 साल बाद 2005 में एक्ट्रेस रंजीता ने फिल्म अनजाने से बड़े पर्दे पर कमबैक किया। फैंस के लिए इनकी फिल्मों में लौटना अपने आप में खास था। 2008 में इन्होंने अपने को एक्टर सचिन के साथ फिल्म जाना पहचाना में काम किया। ये फिल्म आंखियों के झरोखों से का सीक्वेल थी। इसके बाद 2012 में इन्होंने जिंदगी तेरे नाम फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिर काम किया। इस तरह लंबे अंतराल के बाद रंजीता और मिथुन की जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर देखा गया। रंजीता की वापसी ने ये भी साबित किया कि अच्छे कलाकारों की पहचान केवल इनकी लोकप्रियता के दौर से नहीं होती, इनकी पहचान उन किरदारों से भी होती है जिन्हें दर्शक सालों बाद याद करते हैं, और यही रंजीता जी की लाइफ का को दिलचस्प बनाता है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं फिल्म सत्य पर सत्ता का ये एनर्जेटिक सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग भी।

श्रोताओं, बतौर एक्ट्रेस रंजीता कौर ने अपने करियर में करीब 47 फिल्मों में काम किया। फिर पति के साथ अमेरिका में 7-11 स्टोर्स का बिजनेस संभाला और बेटे स्काई का भी ध्यान रखा। मौजूदा दौर में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रंजीता जी अपनी फैमिली के साथ पुणे के गोरे गांव पार्क में रहती हैं। 70 साल की रंजीता का लुक भी काफ़ी हद तक बदल गया है, पर इनकी फिल्मों को देख कर फैंस आज भी इन्हें बड़े पर्दे पर मिस करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को इस प्रोग्राम से अनुमति दीजिए, क्योंकि हम अगले प्रोग्राम में 3 बजे हाजिर होंगे मैटिनी मेलोडीज के साथ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ का, जिसमें हम 60 और 50 के दशक के फिल्मी गानों को आपके साथ सुनते हैं और सुनाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी किसी गीत को सुनने के लिए किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं होती, बस उसकी धुन बजती है और हम पहुँच जाते हैं उस दौर में जहाँ प्यार में शरारत भी थी, नज़ाकत भी थी और बातों में एक अलग ही मिठास हुआ करती थी। 1954 की फिल्म आर पार का ये गीत भी कुछ ऐसा ही है। गीता दत्त की आवाज़ में वो चुलबुलापन, ओपी नैयर का दिलकश संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के खूबसूरत बोल, तीनों मिलकर एक ऐसा रंग रचते हैं जो आज भी सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। प्यार की राह में ज़रा संभल कर चलने की सलाह देता है ये गीत, अपने अंदाज में छेड़छाड़ भी करता है और एक मीठी सी चेतावनी भी है। तो आइए कुछ पल के लिए लौटते हैं उस सुनहरे दौर में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। तो सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म आर पार का ये बेहद लोकप्रिय गीत, बाबूजी धीरे चलना।

जी हाँ दोस्तों, बाबूजी धीरे चलना। अब जरा सोचिए, जब दो दिल पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो बात सिर्फ मुलाकात की नहीं होती। दिल कुछ कहता है, आंखें कुछ और कहती है, और एहसास अपनी ही कहानी लिखने लगती है। फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ऐसा ही खूबसूरत गीत है, दिल से मिला ये दिल। साल 1954 में रिलीज हुई इस फिल्म में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी नजर आई थी। गीत के बोल लिखे थे साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन, यानी SD बर्मन ने। और जब इस गीत को अपनी आवाज़ देती हैं लता मंगेशकर, तो प्यार का ये एहसास और भी नर्म, मीठा और दिल के करीब हो जाता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये खूबसूरत सा नगमा।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कितना भी पीछे छोड़ना चाहें, वो किसी न किसी बहाने लौट ही आती हैं। बीता हुआ वक्त, पुराने रिश्ते और वो दर्द जिसे शायद वक्त भी पूरी तरह मिटा नहीं पाता। फिल्म देवर का ये गीत भी कुछ ऐसी ही भूली बिसरी यादों को फिर से सामने ले आता है। इसे दर्द भरे गीत को अपनी भावपूर्ण आवाज़ दी है मुकेश ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं रोशन। तो आइए कुछ पुरानी यादों के साथ सुनते हैं फिल्म देवर का ये बेहद भावुक नगमा।

श्रोताओं, किसी के नज़र में जब दिल बेचैन हो जाए तो हर धड़कन जैसी एक ही बात कहती है, अब और इंतज़ार नहीं, बस तुम लौट आओ। ये गीत है फिल्म मधुमती का और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। मुंबई यानी सपनों का शहर, जहां हर रोज न जाने कितने लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। किसी को यहां कामयाबी मिलती है, किसी को संघर्ष, और किसी को मिलती है जिंदगी को नए अंदाज में देखने की वजह। इस शहर की रफ्तार रंग और मस्ती को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश करता है फिल्म CID का ये यादगार गीत। ये है बॉम्बे मेरी जान।

मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में सजा ये गीत मुंबई की ज़िंदगी और यहाँ के अल्लड़ अंदाज की एक खूबसूरत तस्वीर खींचता है। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर की इस शानदार रचना के साथ आइए चलते हैं उस दौर की मुंबई की गलियों में।

0: श्रोताओं, शादी दो लोगों का साथ, दो परिवारों का मिलन और ज़िंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। लेकिन जब इस रिश्ते को गीत और संगीत का रंग मिल जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। फिल्म कागज़ के फूल का ये गीत शादी जैसे रिश्ते को बड़े ही दिलचस्प और अपने खास अंदाज में सामने रखता है। हम तुम जिसे कहता है शादी, इस गीत को अपनी आवाज़ दी है सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं कैफी आज़मी ने और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं कागज़ के फूल का ये खूबसूरत सा गीत।
1: ओ पीटर ओ ब्रॉडर हैरी, ओ वल्ला ओ मिस्टर वेरी,
2: मिस्टर आयर आर यू

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। कभी कभी किसी से दूर होकर भी ऐसा लगता है कि शायद उस पल कहीं कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, एक ऐसी मुलाकात की उम्मीद जो अभी हुई नहीं लेकिन दिल को उसका इंतज़ार पहले से है। फिल्म फिर कब मिलोगी का ये गीत भी इसी इंतज़ार और उम्मीद की कहानी कहता है। कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार। मुकेश की आवाज़ में ये गीत की उदासी भी है और एक मीठी सी उम्मीद भी। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

आए, डॉक्टर्स ने उनको देखा और उनको बताया कि आपके पास चंद महीनों की ही ज़िंदगी बाकी है। बट फिर मैंने देखा कि डॉक्टर्स की कोशिश, मेहनत और अल्लाह ताला का करम उन्हें 10 साल की ज़िंदगी दी। वो 2021 के अंदर उनका इंतकाल हुआ। तो उस मेहनत, उस लगन और उस कोशिश को जो मैंने डॉक्टर्स की देखा, तो एक अलग ही इमेज, एक सुपर हीरो वाली इमेज मेरे मन में बन गई डॉक्टर्स के लिए कि दीज आर द पीपल्स विच मेक द लाइफ बेटर ऑफ द पीपल। ये लोग ऐसे लोग हैं जो

0: वो मेरे दिल के अंदर एक ख्वाब, एक सपना पैदा हो गया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा और कामयाब डॉक्टर बनना है।
1: जी बहुत लाइक हमें बड़ा अफसोस के साथ आपकी दिखता है कि आपका जो करियर रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है, मैं अपनी मम्मी के लिए अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो यही जो बच्चा जब करियर चूज़ करता है तो शायद वो सोचता है कि मैं सबसे पहले अपने घर वालों के लिए कुछ करूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। इससे मुझे अपना भी केस थोड़ा सा याद आता है कि जब मुझे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पसंद था बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैंने लोगों को बताया कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो लोगों ने कहा इसमें क्या करोगे, इसमें क्या मिलेगा। और सच बताऊं कभी ये बातें अंदर तक आपको ना कहते हैं ना कि टच कर जाती हैं कि आपको क्या होगा, कुछ कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो आपका जो सफर था, क्या उस वक्त भी ऐसा कभी ना कभी आपके चॉइस पे डाउट आया था आपको कि मैं क्या पता मैं नहीं कर पाऊं, क्या पता मुझसे नहीं हो पाए, क्या पता मैं इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा?
0: मुदस्सिर साहब, ये जो आपका सवाल है वो मेरे बहुत करीब है, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे पॉइंट्स आए जब मैंने सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने गिव अप करने की सोची। मगर फिर जो एक मेरी पर्सनल स्टोरी थी, जो एक मेरी मम्मी की बीमारी थी और पूरा जो एक इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था, उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मैंने 12th के बाद जब नीट की तैयारी करी तो पहले साल में मेरा नहीं हो पाया, दूसरे साल मैंने तैयारी करी तब भी मैं कुछ मार्क्स से रह गया। तो उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं गिव अप करने के पॉइंट पे था। उस टाइम मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से BSc बायोटेक ज्वाइन किया, मैंने 1.5 साल वो कंटिन्यू किया। बट उस दरमियान कोविड आया, और जब कोविड आया मैंने डॉक्टर्स को दोबारा एक सुपर हीरो के रूप में देखा। तो मेरा जो ख्वाब था, एक सपना था, जो मेरे दिल में एक पौधा था जो मुरझा गया था डॉक्टर बनने का, उसको दोबारा से जान मिल गई। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है और अपनी सोसाइटी को सर्व करना है। तो मैंने फिर अपना बायोटेक की फील्ड को छोड़ के, जो कि बहुत अच्छी फील्ड है, ऐसा नहीं है कि वो बुरी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, उसको छोड़ के मैं दोबारा अपने सपने की तरफ लौटा और मैंने नीट की तैयारी करी। और जो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन था BUMS का, वो मैंने ऑप्ट किया और अब मैं एक डॉक्टर की फील्ड में हूँ।
1: जी बहुत अच्छी तरीके आपने बताया। फैजान, आपकी बात तो सुनकर लगता है कि कभी ना कभी आपकी एक चाह होती है कुछ बनने की, कुछ पसंद होती है, आप उसकी तरफ चले जाते हैं। तो आपकी कहानी से अब मैं आता हूँ रिदा पे। रिदा, आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जब ये दौर ऐसा है कि लोग नए नए फील्ड्स में जा रहे हैं, प्रोफेशनल करियर में जा रहे हैं, आपने मैनेजमेंट को अपना छुआ, जो आप बताते हैं, आपने बताया कि आप BBA से ताल्लुक़ रखती हैं, तो कहा जाता है BBA BCOM जो डिग्रीज थी, अब उसके जगह लोग जो हैं और कुछ करना चाह रहे हैं। तो क्या सोचा था आपने कि मैं इसमें करना चाहूँगी, और इससे आपका क्या ख्वाब थे जो आप चाहती थी अपने करियर के लिए?
2: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि तमाम लोग जो हैं आफ्टर कॉमर्स, जब वो 12th अपना कंप्लीट करते हैं, तो उनके पास कुछ दो चार ही ऑप्शंस बचते हैं। जैसे कि हमें पता है CA बचता है, CS बचता है, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, BCOM, BBA। मेरा जब मैंने स्टार्टिंग से अपना 10th कंप्लीट किया था, तब से ही मुझे ये था कि मुझे बिज़नेस लाइन में जाना है, मुझे मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, और मुझे हमेशा से बिज़नेस ही करना था। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख के इंस्पायर्ड होती थी, बड़े बड़े बिजनेसेस को देख के, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लाइफ को देख के, कि यहाँ पे मतलब किस तरीके से बिजनेस बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से कंपनी बिल्ड की जाती है। तो हमेशा से वही था कि मुझे भी ये चीज कभी ना कभी जिंदगी में करनी ही है। तो इस वजह से मैंने अपना कॉमर्स फील्ड लिया था। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे बोला कि ये क्यों कर रही हो, इससे बेहतर और ऑप्शंस हो सकते हैं। जब मैं 10th भी अपना कर रही थी और 11th में, जैसे हम सबको पता है कि फील्ड्स हमें चूज़ करने पड़ते हैं, तो बहुत से लोगों ने अपने राय मशवरे दिए कि साइंस साइड में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। तो जैसे कि हमारे दिमाग में कुछ प्रोफेशंस को लेकर हमेशा से एक बहुत हाई रिस्पेक्ट बनी हुई है, और
1: जी
2: कुछ को लेकर, कुछ कोर्सेज को लेकर एक बहुत ही ऐसा लगता है कि जिसको कुछ नहीं आता वो इन सब फील्ड्स में चले
1: जी
2: जाते हैं। लेकिन जब इंसान का एक पैशन होता है, एक इंटरेस्ट होता है, तो वो उसको मुझे लगता है बरकरार करना चाहिए, बजाय इसके कि जो सोसाइटी कह रही है हमें उस पे ना जाकर अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। इस वजह से मैं अपने BBA लाइन में आई। और BBA में आप सिर्फ ये नहीं सीखते कि आप कैसे बिजनेस बिल्ड करेंगे, आप मैनेजमेंट सीखते हैं। और मैनेजमेंट ये नहीं है कि सिर्फ कंपनीज में होगा, ये हर जगह, आप अपने घर में भी अगर देखें तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये फील्ड इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं लोगों को समझ सकूँ, इंटरेक्ट कर सकूँ, क्योंकि हमें इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो से हमें पता चलता है कि हम अगले को कैसे समझ पाते हैं या अगला क्या महसूस कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ाई जाती हैं। हमें लीडरशिप करना सिखाया जाता है, हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, या दूसरे को अगर हम कोई लीड कर रहे हैं, कोई ग्रुप बना रहे हैं, कहीं भी हम हैं, तो हम कैसे अगले को मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें इसमें हमें पढ़ाई जाती हैं, जो कि मुझे बहुत इंस्पायर और इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसलिए मैंने इस करियर में आना सही समझा।
1: जी मैं भी आपकी बात से बहुत रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि आपने जो कहा कि लोग सोचते हैं कि इसमें फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, पसंद पसंद की जो आप बात कर रहे हैं थी, तो मैं भी जब मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में जा रहा था तब मेरा भी ये खुद से सवाल था कि इस फील्ड में फ्यूचर है भी कि नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि अगर मुझे इसी काम में खुशी मिलती है तो क्यों ना मैं

0: इसको अपने बेहतर बनाने की कोशिश करूं, और शायद इसीलिए मैंने सिर्फ डिग्री पर रुकने के बजाय अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जैसा आपने बताया कि अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, तो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, बोलचाल की भाषा को और अच्छा करना चाहिए, राइटिंग पर काम करना चाहिए, अपने स्टेज फेयर को कम करना चाहिए, और धीरे धीरे चीज़ें आपकी जो वीकनेस होती है वही आपकी ताकत बनती जाती हैं। तो अब हम मैं बात करना चाहूँगा सारा आपसे, आपने अपना करियर को शिफ्ट किया, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि आपके सफ़र में कोई ऐसा शख्स रहा है जो आपके पहली पहचान बना होता है, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया था बहुत, इन्होंने कहा था कि तुम ये करो तो बहुत अच्छा कर पाओगी।
1: मेरे सफ़र के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं था, पर ऐसा एक वक्त आया था जब मेरे को एक इंटर्नशिप करने का मौका मिला था एज अ करियर काउंसलर। तो मैंने बहुत करीब से देखा था कि करियर काउंसलर कैसे काम करता है, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर चार लोगों को एक ही चीज़ पढ़ा दी जाए तो भी चार लोग एक जैसा करियर नहीं बनाते। हर किसी का सोचने का, ज़िंदगी को समझने का, उनके एक्सपीरियंस सब बहुत अलग होते हैं। तो उस सब के ऊपर डिपेंड करके एक इंसान की चॉइस जाती है और उसके हिसाब से बनाते हैं। उस टाइम पे जब मैंने इंटर्नशिप की तो अपने बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं मास कम्युनिकेशन कर रखा था, मैंने फूड न्यूट्रिशन किया, मैं डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट कर रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को एक कैसे बनाया जा सकता है। फिर मैंने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आगे जाके अपना क्लिनिक खोलूँगी। उस बीच के सफ़र में भी मैंने अपनी दो तीन जॉब की, अमेज़ॉन और यूनिसेफ में काम किया, स्किल सीखी, ये समझा कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। आज मैंने अपनी जॉब ख़त्म की है, एक क्लिनिक में मैं काम करती थी यूनिसेफ के बाद चेन्नई के, एंड वो ऑनलाइन काम करते थे।
0: जी
1: और वो पूरी चीज़ ऐसी थी जैसा मैं बनाना चाहती हूँ, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मुझे उस एक एक्सपीरियंस से, एक इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।
0: जी मैं समझ पाऊँ। जैसे आपने एक एक इंटर्नशिप जब आपने करी, जब आपने काम किया, तो आपको मज़ा आने लगा, इसका लगा कि हाँ मैं इसमें कुछ सीख पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, और आपको लगने लगा, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ आगे।
1: एक्चुअली जो इंटर्नशिप थी वो तो करियर काउंसलर की थी
0: ओके
1: और मैं आज डाइटिशियन हूँ।
0: हाँ
1: मुझे उससे ये समझ आया कि एक करियर बनाने में कितना टाइम लगता है। लोग कह देते हैं आ जाओ ये कर लो, कोई आ जाता है, पड़ोसी आ जाता है, कोई भी आ जाता है, रिश्तेदार, आप ये कर लीजिए, आप ये ले लीजिए, साइंस अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है। पर सच्चाई में बात यह है कि हर फील्ड के अंदर लोग आगे जाते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: कोई फील्ड कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, और हर फील्ड के जो लोग आगे होते हैं वो अच्छा कमाते भी हैं, एक अच्छी ज़िंदगी भी बिताते हैं। पर ज़रूरी ये है पहचानना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और इंटरेस्ट और पैशन के बीच में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: पैशन की बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आप में वो काबिलियत है। और लोग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर
0: जी
1: पाते। बहुत लोग साइंस ले लेते हैं पर आगे नहीं कर पाते। काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है, समझ होना बहुत ज़रूरी है, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है क्या आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छे ड्रामे में होते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छे करते हैं, पर जो सुविधा शायद किसी बड़े एक्टर को या उनके बच्चों को मिलेगी वो एक मिडिल क्लास फैमिली को नहीं मिलेगी।
0: जी बिल्कुल
1: तो दोनों का सफ़र एक बहुत अलग जाएगा और ये बहुत एक प्रैक्टिकल बात है। तो इस प्रैक्टिकलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मैंने अपनी इंटर्नशिप से ये सीखा और फिर मैंने ये सीखा कि कैसे मैं इस सब को, अपनी नॉलेज को, अपने पैशन को मिला के कैसे मैं अपना करियर बना सकती
0: जी, आपकी बात से एक बात और मुझे महसूस हो रही है कि कभी कभी करियर का इंतखाब हम अकेले नहीं करते हैं, किसी की बात, किसी का एक मशवरा पूरी डायरेक्शन भी बदल देता है। इसी बात पे मैं फैज़ान आपकी तरफ आना चाहूँगा कि जब आप अपना करियर को सिलेक्ट कर रहे थे, चूज़ कर रहे थे, तो क्या ऐसा हुआ था कि लोगों ने कहा था कि अपना यार ये मत करो, बहुत वक्त लगेगा, लाइक कहते हैं कि जब आप डॉक्टर की फील्ड में जाते हैं, जब आप इस फील्ड में जाते हैं, तो आपको बहुत वक्त लगता है, पहले तो अपनी पढ़ाई को पूरी करने में बहुत वक्त लगता है, फिर उसके बाद आप जब उसमें ऑन ग्राउंड आते हैं तो उसमें बहुत वक्त लगता है प्रैक्टिस के बाद, तो ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा।
2: मुदस्सर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो मेडिसिन फील्ड है, जो एक डॉक्टर की फील्ड है, उसके अंदर बहुत वक्त लगता है। 8 से 10 साल की पढ़ाई, उसके बाद अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करने के लिए 2 से 3 साल की प्रैक्टिस, उसके बाद कहीं जाके एक आप अच्छी अमाउंट में कमा पाते हो। मगर मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मेरे घर वालों ने और मेरे फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे हमेशा बैक किया है कि तुमको जो करना है, तुम्हें जो पसंद है, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कभी भी मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं आने दिया कि तुमको जल्दी सेटल होना है या तुमको पैसा कमाना है, तुम्हें जो है इतना टाइम हो गया अभी तक तुम कमा नहीं रहे हो, और इसके अंदर

0: अपने बड़े भाई का बहुत अहम रोल है, जिन्होंने मुझे हमेशा बैक किया और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि तुम आगे बढ़ो, तुम करो, तुम्हें जो मन पसंद है तुम वो चीज़ करो।
1: तो आपने बताया कि फैमिली का कितना आपका रोल रहा है, आपको बैक सपोर्ट बहुत मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए। तो आपने अपने पैशन को बेसिकली फॉलो किया है, ये आपका पैशन बन गया।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल, ये मेरा पैशन था और बचपन से, जैसे मैंने आपको अपनी कहानी बताई, बचपन से ही मेरा एक पैशन था और मैंने इसको फॉलो किया है और उसको जिया है।
1: जी और आगे भी आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं लगभग। तो मैं आप पे आता हूँ रिधा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप मैनेजमेंट में आप कितना इंटरेस्ट था आपको, आपको लोगों से बात करना बहुत पसंद था, आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स आपने इम्प्रूव करी, तो आपका भी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? क्योंकि अक्सर हम माशरे में देखते हैं जो खवातीन होती हैं उनको ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ के क्या करोगी, तो आप लोग जैसे हमारी जो आज की नौजवान खवातीन हैं वो इस बात को बताती हैं कि कैसे आज भी खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
2: जी, तो मैं अगर आपसे हकीकत बयान करूं तो मेरे जो करियर में या जो मैंने अपना ये चूज़ किया है बिज़नेस मैनेजमेंट, इसमें मेरे घर वालों का कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से ये आज़ादी दी कि मैं क्या करना चाहती हूँ ज़िंदगी में। उन्होंने मुझ पर कभी ये प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें साइंस ही लेनी है, तुम्हें आर्ट्स ही लेनी है, तुम्हें कॉमर्स ही लेनी है। उन्होंने सारी ही चीज़ें मुझ पर रखी कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है तुम उस पर जाओ, तुम जो करना चाहती हो, तुम्हारा जो पैशन है तुम उसको फॉलो करो। दूसरी बात, आपने जो ये मुझसे पूछी है कि ख़वातीन आजकल ये बहुत ज़्यादा हर काम को करने में ये शो कर रही हैं कि हाँ, हर काम वो भी कर सकती हैं जिस तरीके से मर्द हज़रात करते हैं, तो पहले के तौर पे जैसे लड़कियों को बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया करता था कि वो पढ़ेंगी नहीं, सिर्फ घर में ही रहेंगी। और आज भी मुझे लगता है कि कुछ कुछ घरों में या कुछ हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़की को पढ़ाओ लेकिन एंड में उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो आफ्टर शादी या मैरिज के बाद उन्हें काम ही करना है घर का। लेकिन हमारी जो ख़वातीन है, जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं, वो हर फील्ड में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और बहुत आगे जा रही हैं, और वो ये साबित कर रही हैं कि औरतें भी कुछ कर सकती हैं। सिर्फ औरतें घर पे बैठना उनके लिए नहीं है काफ़ी,
1: जी
2: वो बाहर जाके भी बहुत कुछ कर सकती हैं और अपने पैशन को पूरा कर सकती हैं, जो उनकी जो उन्होंने सोच रखा है, जो उनका इंटरेस्ट है उसको वो फॉलो कर सकती हैं। जैसे कि सारा साहिबा ने बताया कि पैशन और जो हमारा करियर है, बहुत से लोगों का पैशन होता है बहुत कुछ, लेकिन हमें पैशन और करियर में ये बैलेंस करना ज़रूरी है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं, उसमें आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी फील्ड हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पैशन म्यूज़िक होता है या डांस होता है, लेकिन उसमें इतना अमाउंट या वो इनकम जनरेट नहीं कर सकते, तो वो अपने जॉब्स में चले जाते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाते हैं या अलग अलग फील्ड्स में जाके वो कर लेते हैं, मगर वो अंदर से खुश नहीं होते। तो वो फिर आगे चल के अपनी 40, 50, 60 साल की जब उनकी ज़िंदगी हो जाती है तो फिर वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं।
1: जी
2: तो मेरा ख्याल ये है कि इंसान को सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं किस में अच्छा हूँ और मैं अपने आप को किस चीज़ में बेहतर बना सकता हूँ। हमें स्किल्स लेनी चाहिए। आज का जैसे है, तमाम फील्ड्स हैं या तमाम कोर्सेज हैं वो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं,
1: जी
2: वो हमें स्किल्स नहीं सिखा पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थ्योरी के साथ साथ स्किल्स भी लेनी चाहिए। जैसे AI चल रहा है मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह ही, मतलब मार्केट में पूरा हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को थ्योरिटी डिग्रीज़ के साथ साथ अपने अंदर स्किल्स भी लेनी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले वक्त में और अच्छा रेवेन्यू या इनकम जनरेट कर सकते हैं।
1: जी बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस तरह से आज हमें जो है टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है और हमें चलना भी चाहिए और हमारा नौजवान चल भी रहा है साथ में। तो सारा मैं आप पे आना चाहूँगा, करियर को बहुत फाइनल चीज़ समझ लेते हैं लोग आजकल कि 18 से 20 साल की उम्र में ही एक डिसीजन लेना है और फिर लगता है बस ज़िंदगी भर यही करना है। लेकिन जैसे कि आपने अपने बारे में बताया कि आपने कितने करियर शिफ्ट करते रहे हैं, आपने बदले, तो अगर कोई यंग पर्सन 25 से 30 की एज में भी या आगे बढ़कर भी कहता है कि नहीं मुझे लगता नहीं कि मैं इस फील्ड में कुछ कर पाऊंगा, मुझे कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको रास्ता बदल लेना चाहिए अपना?
3: मेरा मानना है कि अपनी लाइफ के अंदर सीखते रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए मुझे एक ही चीज़ करनी है। जैसा रिदा ने बताया, स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। जाएं, कुछ भी सीखें, आगे जाएं, फील्ड बदलें, देखें आगे, इंटर्नशिप करें, जॉब करें। आप जितना सीखते हैं आप उसे उतना ही अप्लाई कर पाते हैं। अगर आज आपको नहीं समझ आ रहा कि कुछ नहीं करना या क्या करें, तो कश्मकश में नहीं बैठें, रोएं नहीं, सोचें नहीं, जाएं, जो पहली चीज़ मिल रही है उसे करना शुरू कर दें। धीरे धीरे धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि कहाँ आपको कितना करना है। तो कल ये आप स्किल्स बढ़ा बढ़ा के

0: अपने करियर को यूनिक बना सकते हो। ये एक इतना यूनिक करियर होगा जो दूसरा बंदा कर ही नहीं पाएगा। कोई इंसान आगे बढ़ने के लिए उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप चाहे एक कछुए की तरह हल्के हल्के चलें, पर खरगोश की तरह जल्दी जल्दी जाके फिर भटक जाएं, फिर जाएं, वैसे नहीं करना चाहिए। आपका गोल एक ही होना चाहिए कि आप चलते रहें, चलते चलते चलते चलते रास्ते भी मिलते जाते हैं और आपको समझ भी आने लगता है कि आपका क्या पैशन है, आपको क्या पसंद है और आपको क्या आगे करना है,
1: और मंजिल भी मिलती जाती है। तो यही
0: जी,
1: यही वाली
0: मिलती
1: बात है
0: जाती है।
1: बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और यही एक नौजवान को सोचना चाहिए कि हमें कहीं रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि अब हम इसमें हैं तो अब इसके आगे हम और कुछ नहीं है। आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं वो बच्चा था जो कभी माइक पर बोल भी नहीं पाता था। एक वक्त तो ऐसा था कि मेरे हाथ कंपकंपाते थे, डरता था कि माइक पर कैसे बोलूँगा यार, माइक के नाम से डर लगता था। पर एक उस्ताद थी जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही करते करते एक अपना पैशन बन गया, आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए, डायरेक्शन हो गए। और बचपन में अक्सर ये होता है, हमें कहते हैं नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें ये करना है, वही पुरानी जितनी भी सोच है ये सब करना है आपको। पर कोई ये नहीं सोचता कि कुछ आगे भी आप, और आजकल अपॉर्चुनिटी कितनी आ गई है जब से AI आया है, जब से टेक्नोलॉजी आया है, नौजवानों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी और खुल गई हैं। पर हमें महदूद नहीं करना है, हम लोग अपने आप को महदूद कर लेते हैं कि हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो फैजान साहब, मैं आप पे इस बारे में आना चाहूँगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम जब फेल होते हैं ना, हमें लगता है कि यार इसमें मैं नहीं कर सकता कुछ। मैं भी बहुत बार फेल हुआ। मुझे लगा कि एक बार क्या हुआ था, मैं माइक पर गया तो मैं बिल्कुल भूल गया था, मैं सोच रहा हूँ मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो ऐसा होता है, तो मुझे लगा यार शायद मैं अब नहीं कर पाऊंगा ऐसा कुछ। पर उसके बाद मैंने अपने आप को समझाया, मुझे किसी ने समझाया, कोई बात नहीं, एक बार गिरोगे, चींटी की कहानी याद है ना, एक बार चढ़ती है फिर गिरती है फिर चढ़ती है, तो वो लास्ट तक कोशिश करती रहती है। और कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताइए, जब आप लास्ट में, जब आप कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप फेलियर का आपने सामना किया होगा, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा आगे, मैं अब गिर गया, मैं हार मान रहा हूँ, तो उस वक्त आपने क्या किया था?
2: मुदस्सर साहब, मेरा एक मानना ये है कि कभी भी इंसान जो फेल होता है तो उसको अफसोस नहीं करना चाहिए, उसको जो है दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। जब तक कोई इंसान फेल नहीं होगा तब तक वो ये नहीं सीख पाएगा कि उसने क्या गलती करी। तो जितना ज़रूरी किसी को इंसान को सक्सेस मिलना है, उतना ही ज़रूरी मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ फेलियर्स होने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि सक्सेस उसे उतना नहीं सिखाती जितना एक फेलियर उसे सिखाता है।
1: जी
2: और फेलियर उसे मजबूर करता है कि वो अपनी जर्नी को देखे, अपने सफ़र को देखे कि उसने कहाँ क्या कमी करी है। और मैंने अपनी फेलियर से बहुत सीखा है, और मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में हर इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। और जिस इंसान ने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लिया कि हाँ, मैं कोई बात नहीं, मैं फ़ेल हो गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग फेल होते हैं, मुझे अब यहाँ से रिवाइव करना है, मुझे यहाँ से दोबारा उठना है, दोबारा शुरू से शुरू करना है, तो वही इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाता है, एक बेहतर मुस्तकबिल बना पाता है।
1: जी, आपने बहुत ठीक कहा इस बात पे फैजान साहब। और जिस तरीके से आपने कहा कि नौजवान को कोशिश करते रहनी चाहिए, तो फैजान साहब आपकी बात से मुझे एक भी चीज़ याद आ रही है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो रिदा, मैं आप पे इसी बात पे आ रहा हूँ कि आपको भी कभी कभी लगा होगा कि जी मुझे सब कुछ हासिल करना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप भी, कहीं ना कहीं फेलियर का आपने भी सामना किया होगा। तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया, और आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो ओवरकम करें?
3: मैं फ़िज़ान साहब की बात से ही आगे बढ़ना चाहूँगी। जैसे कि उन्होंने कहा, मेरे ख़्याल से हम यूथ को या हम हर एक बच्चे को जो भी अपना करियर चूज़ करता है या करियर में आगे बढ़ रहा है, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा जो होता है वो अपने अपने में मुख्तलिफ होता है। हर एक बंदे के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर अलग इंटरेस्ट होता है, अलग स्किल्स होती हैं, तो हमें अपने आप पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी वीकनेस को सीखना चाहिए, अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए और हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, और उससे नई नई चीज़ें और हमें सीखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने इंटरेस्ट और पैशन को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए और उसी में काम करना चाहिए। जैसे कि सिर्फ एक करियर को लेकर आप ना चलें, आप उसको स्विच कर सकते हैं, स्विच ना भी करें तो आप आगे नई चीज़ें सीखें। आप उसमें, आजकल देखें हमारी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, हमारे इंडिया में अगर देखें सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट का इसमें इतना हाल है कि इसमें इतना हाथ है कि उन्होंने नई नई यूथ के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाई हैं। स्किल इंडिया ले लें, विकसित भारत ले लें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को स्किल सिखाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे लिए काफ़ी नहीं है आज की दुनिया के लिए, हमें स्किल सीखना, हमें नई चीज़ें सीखना, अपने अंदर नए काम को सीखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, रोज़गार की बात करी।

0: आपकी बात से मुझे ये भी पता चला कि हम अपनी नस्ल को सिर्फ रोज़गार के लिए तैयार कर रहे हैं, हालांकि रोज़गार ज़िंदगी के लिए होता है, ज़िंदगी रोज़गार के लिए नहीं। सामईन, तो आज की इस गुफ्तगू से शायद हम इतना ज़रूर समझ पाए कि करियर का इंतखाब सिर्फ एक पेशा का इंतखाब नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानने, अपनी सलाहियत पर यकीन करने और अपने मुस्तकबिल को अपने अंदाज में तराशने का सफ़र है। हमारे साथ मौजूद हैं सारा, फैज़ान और इदा फातिमा, जो कि BBA से ताल्लुक़ रखती थी। तो उन्होंने, इन सब ने अपने ख्वाबों के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक शेर के साथ कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं।
1: करियर के इंतखाब में पसंद और मुस्तकबिल की कशमकश। समीन, इस मौजू के तहत अभी आप ये मुज़ाकरा सुन रहे थे। तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

听众朋友们，接下来我们播送 Benny Dale 唱的一首歌曲。听众朋友们，请享受。

听众朋友们，接下来我们播送山和山的努莫伊德拉唱的一首歌曲，请享受。

0: and Sri Nagashwin Singireddy. Next in line is the best debut film of a director, Swatantra Veer Savarkar in Hindi, directed by Sri Randeep Hooda, wins the honors.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का अवार्ड मिला है रणदीप हुड्डा को, एक ऐसा नाम जिसे दर्शक अभिनेता के रूप में वर्षों से जानते हैं, लेकिन आज उनकी पहचान के साथ एक नया अध्याय जुड़ रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा ने हाईवे, सरबजीत, रंग रसिया और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई और आज कैमरे के सामने खड़ा होने वाला यही कलाकार कैमरे के पीछे की अपनी दृष्टि के लिए सम्मानित हो रहा है।
0: After the best debut director comes a turn of the best feature film and that is the Hindi feature film Article 370. Producer Geo Studios and B62 Studios represented by Shri Aditya Dhar is going to receive the award. Producer Aditya Dhar receives Indian cinema's top prize, the Swarna Kamal for best feature film. The production delivers a high-stakes political thriller examining complex national intelligence operations. It was lauded for its high technical finish, research and cinematic tension. And next in line is the best feature film Article 370 Hindi director Shri Aditya Suhas Jambale.
1: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 घोषणा हो चुकी है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल जाता है आर्टिकल 370 को। फिल्म के निर्माता हैं जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज और इनकी ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री आदित्य धर और निर्देशक हैं आदित्य सुहास जम्भाले।
0: Director Aditya Suhas Jambale just received the Swarna Kamal for directing the best feature film of the year. He handled complex procedural drama with narrative clarity, suspense and technical discipline. And now all listeners, we have arrived at the sacred high point of this ceremony. The entire gathering of 1,000 dignitaries in this German dome has risen to his feet. A roar of standing applause would be following, reverberating across the pavilion. This is the moment for the conferment of Indian cinema's supreme lifetime honor, the Dada Saheb Phalke Award, instituted by the Union government in 1969 to commemorate Dundiraj Govind Phalke, the visionary patriarch who dared to dream that Indian faces can see the screen a world over. It carries the Swarna Kamal medallion, a hand-woven Kashmiri shawl, and a cash purse of 15 lakh rupees. And this year's Dada Saheb Phalke awardee is Shri Anant Nag.
1: जी हाँ श्रोताओं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार मिल रहा है अनंत नाग को। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके 5 दशकों से अधिक के योगदान के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने 1970 के दशक से लगातार अभिनय किया और 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और मराठी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उनका योगदान कई भारतीय भाषाओं तक फैला।

0: with rare versatility, grace, and humanity, ladies and gentlemen, Sri Anantnag getting Dada Sahab Phalke Award for the year 2024.
1: Kartal Dhwani ke saath Abhinandan Bharatiya Cinema ke atyant sammanit aur lokpriya kalakar ka, jinhone विभिन्न भाषाओं में अपनी विशिष्ट कला साधना से देश की विविध सिनेमाई परंपराओं को समृद्ध किया, जिनकी सादगी में गरिमा, सहजता में प्रभाव और प्रत्येक भाव अभिव्यक्ति में असाधारण

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho nasema
1: 2019 mein maine ki vyaktigat roop se. Aur jaisa ki aapne gramin paryatan ki baat ki, ye koi uddeshya nahi tha gramin paryatan ka, bas pehli shuruaat thi apne liye rasayan mukt kheti karna, apne parivar ke liye rasayan mukt kheti karna.
2: Ji.
1: Aur जब मैंने वो खेती करी और जो उसका उत्पादन मेरे परिवार के लिए मैं करता था, उससे जो सरप्लस जो था, जो एक्स्ट्रा मेरे पास होता था, उसे बेचने की एक बड़ी समस्या थी कि उसे बेचने के लिए हम कहाँ जाएं. अगर हम बाजार में मंडी में ही जाएं जहां पर और रासायनिक किसान जाते हैं, वही भाव मिलेगा जो उनको मिलता है, जबकि हम प्राकृतिक खेती में उत्पादन जो है वो उत्तम गुणवत्ता का करते हैं, बिना रसायनों का करते हैं. तो जाहिर सी बात है किसान चाहेगा कि उसको उसका अच्छा दाम मिले, और वो दाम देने के लिए शहर के लोग तैयार होते हैं, लेकिन शहर तक जो किसान है उनकी कनेक्टिविटी नहीं होती. मैं क्योंकि शहर में पला पड़ा था, मेरे नेटवर्क थे, मेरे परिचित लोग थे, मित्र थे जो शहर में रहते थे, वो चाहते थे रसायन मुक्त चीजें मिले, और मैं खुद पैदा करने लगा था. तो मैंने उन्हीं के साथ संपर्क साधा और उनके माध्यम से और लोगों से मैं धीरे धीरे जुड़ता गया. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने हमारे जो फार्म है उसको जो है इस तरह से डिजाइन किया कि उसमें बागवानी और फल सब्जियों के साथ साथ अन्य प्रकार के अनाज भी होते थे. साथ में हम मधुमक्खी पालन हमने शुरू किया, शहद उत्पादन शुरू किया. तो ये सब चीजों को हमने डेमोंस्ट्रेट करने के लिए जो शहर में हमारे उपभोक्ता भाई थे उनको हमने अपने ग्राम में अपने अपने जो फार्म पे है वहाँ आमंत्रित करना शुरू किया. वो परिवार के साथ आते थे, एक दिन का वहाँ स्टे करते थे, वहाँ के वातावरण को देखते थे. चूंकि हमारा गांव जो है जहाँ हम खेतीबाड़ी अभी कर रहे हैं वो बहुत ही नजदीक है माँ गंगा के, तो गंगा स्नान करने का उन्हें अवसर मिल जाता था. ऐसे करते करते लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमारे फार्म पे आते थे तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करते थे, उनसे और परिचित लोग उनसे जुड़ते थे. तो देखते देखते और लोगों को जानकारी मिलने लगी, वो उनके संपर्क के माध्यम से हमारे साथ संपर्क में आने लगे. और आज के समय में हमारी स्थिति है कि हम हर शनिवार इतवार कोई ना कोई परिवार शहर से जो है हमारे फार्म पर आता है, और वो वहां पर जो है समय व्यतीत करता है, उस वातावरण को जीता है, हमारे उत्पादों को खरीदता है, और साथ में जो है जो रूरल टूरिज्म जिसकी भारत सरकार भी आज बहुत कोशिश कर रही है कि प्रमोट किया जाए, उस तरफ वो ऑटोमेटिकली ही चलने लगा. और आज लगभग मुझे जो है 7 वर्ष हो गए हैं खेतीबाड़ी करते हुए, और ग्रामीण पर्यटन की तरफ जो है हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. अपने फार्म को हमने इस तरह से विकसित किया है, हम लोगों को जो है फार्म स्टे का आनंद भी लोग वहां उठाते हैं, साथ में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, प्राकृतिक खेती कैसे होती है ये हम सिखाते भी हैं, मधुमक्खी पालन हम लोगों को सिखाते हैं, अन्य किसानों को सिखाते हैं. कुल मिला के इस तरह का छोटा मोटा प्रयास हमने किया है, हम जो है अपने तरफ से जितना हो सकता रहा है कर पा रहे हैं.
2: जी, यानी कि जो आपका परंपरागत ज्ञान था, है ना, जो आपने थोड़ा बहुत कृषि के बारे में जानते थे उसमें आपने विज्ञान को मिलाया,
1: बिल्कुल
2: वैज्ञानिक विधि से, और इसे कृषि को एक ज्ञान आधारित उद्यम बनाया, एक व्यवसाय की तरह किया. तो सबसे पहले जब हम परिवार से शुरुआत करते हैं तभी तो गांव के बारे में सोच सकते हैं, तभी तो देश के बारे में सोच सकते हैं, हम आगे बढ़ें और सबको साथ लेके बढ़ें. तो अभी जो आपने वहां पे फार्म टूरिज्म कर रहे हैं, वहां पे कितने लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है?
1: देखिए, जब हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत ही सीमित विकल्प होते हैं वहाँ के जो किसान होते हैं उनके पास. लेकिन जैसा कि हमने आगे बढ़ते हुए इस ग्रामीण पर्यटन को अपने साथ अपना एक एक्टिविटी का पार्ट बनाया, साथ में हमने एक अपना FPO बनाया 2022 में.
2: FPO बनाया?
1: जी, उस 2022 में FPO बनाने के बाद हमने जो है अपने साथ और किसानों को जोड़ा, और आज लगभग 800 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं. उसी FPO की कड़ी में ही हमने ग्रामीण पर्यटन को साथ में लेते हुए फूड प्रोसेसिंग को साथ में जोड़ा, जिसमें हम अपना तेल का एक्सपेलर लगा चुके हैं, अपना खुद तेल हम तैयार करते हैं. उसके अलावा हमने जो है अपना शहद उत्पादन की छोटी सी यूनिट लगाई हुई है. उसके अलावा हम जो है वहाँ पे फल और सब्जियों की ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर मार्केट तक पहुंचाते हैं, अपने उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं. तो इस सभी कामों में लगभग 50-60 जो लोग हैं गांव देहात के हमारे साथ जुड़े हुए, उनको रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर. और उसके अलावा 800 किसानों को जो हम प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं वो सिखा रहे हैं, और उनका भी प्राकृतिक तरीके से उत्पादन कराकर सीधे उपभोक्ताओं तक बेचने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें उचित लाभ भी मिलता है. तो इस प्रकार देखा जाए तो लगभग 800 किसानों के परिवार जो है वो आज हमारे इस FPO के माध्यम से लाभ उठा पा रहे हैं.
2: तो ये FPO का जो आपने बनाना जब बनाया तो आपने कहाँ मतलब जाके बात की और कैसे सहायता मिली आपको, किससे संपर्क किया आपने?
1: देखिए, मैं बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने पूरे देश भर में 10,000 FPO बनाने का एक लक्ष्य रखा था, और उस लक्ष्य के अंतर्गत हमारे जो देश में जो FPOs बनाए गए उसी में ही एक FPO बनाने का लक्ष्य जो था वो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से हमारे हापुड़ जनपद में था. हमारा जो FPO है ये सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और शुरुआती दौर में जो है लगभग 300 किसानों से शुरुआत की थी, और आज 800 किसान हमने रजिस्टर करा लिए. इसमें हमारे जो सदस्य हैं और उन्हीं का जो उत्पादन है उसको कैसे प्रोसेस करके, प्रसंस्करण करके, या उसमें जो है वैल्यू एडिशन करके हम जो है उसे उपभोक्ता तक पहुंचा सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं. और पंजीकरण सहकारिता विभाग से है, तो हमने हमारे किसान किसानों के जो KYC डॉक्यूमेंट

0: होते हैं उनको जो सहायक आयुक्त सहकारिता का जो विभाग है हापुड़ का, वहां पर इसका पंजीकरण कराया शुरुआत में। और साथ में हम जो है अभी निर्यात के भी अवसर जो है अपने एफपीओ के माध्यम से किसानों के लिए खोल रहे हैं। बीते वर्षों में हमने कुछ सब्जियों का निर्यात किया था, तो इस प्रकार से हम जो है सभी किसानों के हित में इस एफपीओ को लेके चल रहे हैं।
1: जी, गुणवत्ता होगी तो निर्यात के लिए अवसर भी ज्यादा हमारे सामने आएंगे। और युवा प्रगतिशील किसान हैं आप, और व्यवसायी कहूंगे व्यवसायी किसान हैं आप, जिन्होंने कृषि को एक व्यवसाय की तरह किया है, आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं?
0: देखिए, मैं तो देश के सभी युवाओं से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि हम बात करते हैं विकसित भारत की, और विकसित भारत जो है वो तभी संभव है जब इस देश का युवा, इस देश की जो आत्मा है जो कि गांव में बसती है, उसको तरफ रुझान बढ़ाएगा और गांव के विकास की तरफ जब हम चलेंगे। हमारे देश के युवा जो है गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, ग्रामीण रोजगार के तरफ जो है विकल्प बढ़ाने की तरफ प्रयास करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की तरफ प्रयास करेंगे और मुड़कर देखेंगे अपने गांव की तरफ, तभी हम विकसित भारत के उस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और मैं अपने देश के सभी युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि वो बजाय रोजगार ढूंढने के, रोजगार पैदा करने के अवसर बनाने की तरफ चले, जिसमें भारत सरकार और राज्यों की सरकारें भी जो है मदद करती हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री लघु सूक्ष्म लघु उद्योग की तरफ से जो है पीएमएफएमई योजना चलाई जाती है, जिसमें किसी भी किसान परिवार हो या कोई अन्य परिवार भी हो, उसमें कोई भी युवा अगर रोजगार करना चाहता है तो 35% तक का अनुदान जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है किसी भी छोटे रोजगार को करने के लिए। और उसी के माध्यम से हमारे जो हापुड़ जनपद में है, हमारे कई किसान परिवारों को हमने जो है रोजगार के लिए छोटी छोटी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करवाई। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रयास कर अगर देश के युवा रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार देने के अवसर अगर बनाना शुरू करेंगे तो भारत भी विकसित होगा, वो स्वयं विकसित होंगे और उनके परिवार जो है वो आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश तभी आगे बढ़ेगा अगर हमारे गांव आगे बढ़ेंगे, और गांव को आगे बढ़ाने में अगर आप जैसे युवा प्रगतिशील किसान आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हम जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है हम उसे जरूर प्राप्त कर पाएंगे। और हर्षवर्धन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये बातचीत सुन रहे थे प्रगतिशील किसान से कि क्या कुछ संभावनाएं हैं कृषि पर्यटन को लेकर। और अब बात करेंगे किसानों के लिए वैज्ञानिक भंडारण तकनीक, उस तकनीक के बारे में जो कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ फसल की सही तरीके से भंडारण करना भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरिता, और वैज्ञानिक भंडारण तकनीकों से अनाज, दाल, तिलहन, फल, सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, साथ ही नमी, कीट और फफूंद से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
3: यह मतलब कहने का मतलब यही है कि किसान को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और वैज्ञानिक भंडारण तकनीक अपना कर आप इस नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और इस तकनीक की अगर हम बात करें तो इसमें है कि आप अनाज को अच्छी तरह से सुखाना, जैसे कि आप भंडारण कर रहे हैं तो उसके पहले अनाज को अच्छी तरह से सुखाएं, और अनाज में अधिक नमी रहने पर क्या देखा जाता है कि फफूंद और कीट बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए फसल को धूप या उचित यांत्रिक ड्रायर से आप सुखाकर सुरक्षित नमी स्तर तक ला सकते हैं।
2: बिल्कुल, इसके अलावा साफ सफाई जैसे टूटे, संक्रमित और खराब दानों को अलग कर देना चाहिए। हवादार भंडार गृह हो, मतलब वेंटिलेशन हो, यानी गोदाम में उचित वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि नमी जमा ना हो। फर्श से ऊंचाई पर भंडारण रखकर जरूर करें। अनाज की बोरियों को सीधे जमीन पर रखने के बजाय लकड़ी के पैलेट या प्लेटफॉर्म पर रखें। नमी से बचाव की आपने बात की तो गोदाम की छत, दीवार और फर्श में सीलन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कीट नियंत्रण की बात करें तो भंडारण से पहले गोदाम की सफाई और आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक कीट नियंत्रण उपाय जरूर किए जाएं। इसके साथ ही एयर टाइट भंडारण यानी उपयुक्त परिस्थितियों में हरमेंट या वायुरुद्ध कंटेनर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
3: और कहते हैं कि भंडारित अनाज की का ना समय समय पर जांच करते रहें, यदि तापमान, नमी, बदबू या कीड़े या फफूंद दिखाई दे तो तुरंत उचित कार्रवाई आपको कर लेनी चाहिए। और भाई अगर लाभ की बात करें तो वैज्ञानिक भंडारण से अनाज की जो गुणवत्ता है ना वो बनी रहती है, कटाई के बाद होने वाला जो नुकसान है वो घटता है, फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और किसान अपनी उपज को उचित समय पर बेचकर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, इसके अलावा धातु के डिब्बे और साइले यानी छोटे और बड़े स्तर पर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी है धातु के डिब्बे या फिर साइलो। इसके अलावा तापमान और नमी की निगरानी जरूर होनी चाहिए, जैसे बड़े गोदामों में सेंसर के माध्यम से तापमान और आर्द्रता

0: की निगरानी की जा सकती है। नियमित निरीक्षण हो, समय समय पर दानों में कीट, फफूंद, बदबू या नमी की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा फल सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज जो है, यानी जल्दी खराब होने वाले उपज के लिए नियंत्रित तापमान वाली सुविधाएं उपयोगी है।
1: यानी कि अच्छी फसल का सही मूल्य आपको तभी मिलेगा जब फसल कटाई के बाद भी सुरक्षित रहे। तो वैज्ञानिक भंडारण आप अपनाते हैं तो नुकसान घट जाएगा और किसान जो है अपनी आय को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, वैज्ञानिक भंडारण के फायदे की बात सरिता आपने की, तो फसल की बर्बादी और भंडारण नुकसान कम होता है, अनाज की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है, कीट और फफूंद से होने वाला नुकसान कम होता है, किसान को अपनी उपज तुरंत कम कीमत पर बेचने की मजबूरी से बचने में मदद मिल सकती है, बेहतर गुणवत्ता वाले उपज से बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है और साथ ही खाद्य सुरक्षा और किसान की आय दोनों को मजबूती मिलती है।
1: तो ये बात हम कर रहे थे किसानों के लिए वैज्ञानिक भंडारण तकनीक के बारे में, और अब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का अगर सरल शब्द में अगर इसका अर्थ समझाए तो जो वस्तुएं भारत में बनाई जा सकती है उसका उत्पादन भारत में बढ़ाना और भारत को दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना। इसका मतलब है केवल विदेशी कंपनियों को भारत में कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ भारतीय कंपनियां छोटे और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप्स, कारीगरों, उद्यमियों को भी उत्पादन बढ़ाने के अवसर देना जरूरी है। और भाई अगर बात करें राजेश भाई, तो इस प्रक्रिया में तीन बहुत जो बातें हैं महत्वपूर्ण, एक तो निवेश है, उत्पादन है और रोजगार है। अगर देश में कारखाने लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी और कई अन्य सेवा है जिसकी मांग भी बढ़ती चली जाएगी। तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम समय के साथ बहुत सारे क्षेत्रों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे बहुत सारे हैं, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, एविएशन, रिन्यूएबल एनर्जी, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, मेडिकल डिवाइस और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में भारत की घरेलू जो ज़रूरतें हैं पूरी करने के साथ साथ निर्यात क्षमता बढ़ाने की भी संभावना बनती है।
0: बिल्कुल, आपने मेक इंडिया की जो बात की तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई और दरअसल इसके शुरू करने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये था कि क्योंकि भारत एक श्रमिक प्रधान देश है, क्योंकि अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है और एक बड़ा जो लेबर है उसके लिए कोशिश हुई कि हम सर्विस सेक्टर है या फिर दूसरे सेक्टर से जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक बड़े अपॉर्चुनिटी के तौर पर मेक इन इंडिया एक प्रोडक्शन हब बनाया जाए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हो उसको बाहर भेजकर एक तरीके से वो अब इस कोशिश ये थी कि विदेशी कंपनियों को हम या तो FDI लगे या विदेशी कंपनियां यहाँ के एस्टेब्लिश करें, यहाँ प्रोडक्शन करें सामान का और वो फिर हम एक्सपोर्ट हो। तो इसको लेकर काफ़ी हद तक सरकार को इसमें मदद भी मिली, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और इसके साथ ही घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना भी था इसका उद्देश्य। इसके अलावा युवाओं को, यूथ को लगातार इससे रोज़गार मिल रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है और इंडस्ट्री से लेकर तमाम वो सेक्टर्स जो है मेक इन इंडिया से सीधा हम देख रहे हैं। आज अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो लगातार वहाँ पर स्वदेशी जो है जो अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार की तरफ से डिफेंस सेक्टर में काफ़ी खर्च किया गया है ताकि जो स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिले, मेक इन इंडिया को बूस्टअप किया जाए। तो ये एक कोशिश है कि यहाँ पर उन उत्पाद को बनाकर और एक तरीके से आत्मनिर्भर भी बने और दूसरा कि इससे अपने जो GDP है, देश की GDP है, अर्थव्यवस्था है, उसको एक तरीके से एक बूस्टअप मिले। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके।
1: जी हाँ, भारत में निर्माण, भारत के लिए विकास और दुनिया के लिए अवसर, ये इसका फायदा है। तो बात थी मेक इन इंडिया की। और राजेश भाई, अगर हम समय की तरफ देखें
0: बिल्कुल, तो घड़ी कह रही है कि अब
1: कार्यक्रम संपन्न करना चाहिए। तो सभी ग्राम संसार सुनने वाले भाई बहनों को राम राम, राम, राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार परासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। अब से कुछ ही देर में यानी शाम को 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। फिल्म जगत को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक शक्ति और विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती हैं। समारोह में दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल की 2898 AD को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और आर्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकाडी को संयुक्त रूप से दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगली चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: toi.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इस वक्त शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
4: नमस्कार।
3: रजनीश, इस कार्यक्रम के जरिए हम सब खेती बाड़ी की नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, चाहे वो नई तकनीक हो, फसल प्रबंधन की बात हो, बागवानी, पशुपालन या सरकार की किसान हितैषी योजनाएं ही क्यों ना हो।
4: और प्रतिमा देखिए, आज हम बातचीत करेंगे सब्जियों के सुरक्षित प्रबंधन, तोड़ाई से भंडारण तक। साथ ही हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर।
3: साथ ही हम जानकारियां भी देंगे, जैसे कृषि सलाह, मौसम और आजादपुर मंडी के फल और सब्जियों के भाव के बारे में। साथ ही लोकगीत भी सुनवाएंगे। तो पहले चर्चा करते हैं राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर।
4: जलवायु परिवर्तन के सामने खेती को मजबूत, टिकाऊ और अधिक उत्पादक बनाने की एक पहल जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि को मौसम और जलवायु के बदलावों के प्रति सुरक्षित और लचीला बनाना, साथ ही मिट्टी और नमी के संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना।
3: जी हाँ, और मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग और उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग, जल संरक्षण और जल दक्षता, कम पानी में अधिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म सिंचाई और अन्य जल बचत तकनीकों को बढ़ावा देना।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, इसीलिए जल प्रबंधन के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद अधिक फसल के जरिए जल उपयोग की दक्षता भी बढ़ाई जाती है। साथ ही सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता का आंकलन करना भी इस मिशन का उद्देश्य है।
3: इस मिशन में एकीकृत कृषि प्रणाली, फसल के साथ पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी आदि को जोड़कर किसान की आय के विभिन्न स्रोत विकसित करना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, पानी और जैव संसाधनों का टिकाऊ उपयोग।
4: और प्रतिमा, हम हमेशा कुछ नए नए विषयों पर बात करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होता है सही आहार, और सही और संतुलित आहार के लिए जरूरी होती हैं साग सब्जियां। लेकिन अच्छी साग सब्जियां हमें तभी मिलेंगी जब उनका सही उत्पादन होगा।
3: बिल्कुल, और सब्जियों का सुरक्षित प्रबंधन तुड़ाई से भंडारण तक, ये बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि पूरे वर्ष जब किसान भाई बहन सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं रजनीश, जिनका भंडारण करना बहुत जरूरी होता है ताकि वर्ष भर वो उपलब्ध हो सकें। आज का हमारा विषय भी यही है, सब्जियों का सुरक्षित प्रबंधन तुड़ाई से भंडारण तक।
4: और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बीएस तोमर, जो कि अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
5: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: जिस तरीके से डॉक्टर साहब हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनका देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था में काफी महत्व है, और उसी तरीके से जो हमारी सब्जी फसलें हैं उनका भी महत्व रहता है, लेकिन सब्जी फसलों की जो भंडारण क्षमता होती है वो कम होती है, जिसके कारण किसान उसको भंडारित नहीं कर पाते, उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप क्या किसान भाइयों को जानकारी देना चाहिए?
6: देखिए, मैं दो तीन बातें इसकी पृष्ठभूमि में बताना चाहूंगा
5: जी,
6: कि जो शाकीय फसलें हैं जिनको हम सब्जी फसलें भी बोलते हैं, इनकी जो भंडारण क्षमता है वो दूसरी फसलें हैं जैसे दलहन है, तिलहन है या धान्य फसलें हैं, उनकी अपेक्षा कम होती है। और गौरव की बात यह है कि भारत दुनिया में दूसरा बड़ा सब्जी उत्पादन का देश है, और इसमें हमारे किसान भाई उत्पादन करने में बहुत परिश्रम करते हैं, संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो जो उपभोक्ता तक पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने में उसका काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान की जो मात्रा है वो कई देशों की जीडीपी नहीं है जितना नुकसान हमारा होता है। 20-25 साल पहले तो ये नुकसान की दर 25-40% होती थी सब्जी फसलों में, लेकिन वैज्ञानिक शोध, किस्मों के विकास, भंडारण क्षमता का विकास देश में पिछले 20-25 सालों में बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि सभी सरकारों ने इसको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए कटाई के उपरांत होने वाले नुकसानों को कम करने की दिशा में प्रयास हुआ। दूसरा, हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है हम पोषण सुरक्षा की बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि भई हमने खाद्य सुरक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन हमें पोषण सुरक्षा भी प्राप्त करनी है। और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शाकाहारी आहार या साग सब्जियों का हमारे भोजन में बहुत बड़ा योगदान उभर के सामने आता है, क्योंकि इनसे बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स ये मिलते हैं जो हमारे छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए और सभी प्रकार की आयु वर्ग के लोगों के लिए ये एक वरदान है। इसलिए हमारा ये नुकसान उत्पादन के बाद कम से कम हो, तो इससे हमारे संसाधनों में उनका बचाव होगा, उपभोक्ता को ताजी बेहतर सब्जी मिलेगी और हमारा पोषण सुरक्षा पे भी जो सरकार का ध्यान है उस पे योगदान होगा। तो अब बात आती है कि भई ये जो नुकसान होते हैं कारण क्या हैं और उन कारणों को हम किस प्रकार से निदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि भई हमारा जो ब्रीडिंग करना है, हमें ऐसी किस्मों का विकास करना होता है जिनमें कटाई के उपरांत अपने आप सुरक्षित रहने की क्षमता लंबे समय तक रहे। और बहुत सारी फसलों में इस तरह प्रकार के प्रयास हुए हैं जिनकी भंडारण क्षमता का विकास हुआ, चाहे आप उसमें भिंडी का नाम लें, चाहे करेले का नाम लें, लौकी का लें, प्याज और आलू, लहसुन, शकरकंद लें या हमारी और दूसरी फसलें हैं, इन सब में भंडारण क्षमता के अनुरूप कार्य किया गया या उनकी उत्पादन जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, उनका विकास किया गया ताकि उसमें कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान को कम कर सकें। उसमें मैं प्याज, आलू, लहसुन ये तीन ऐसी सब्जी हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में पैदा होती हैं, भंडारण में जाती हैं और इनका उपयोग भी बहुत होता है। तो इनमें वैज्ञानिकों के प्रयासों के कारण आज हमारा आलू का जो सड़ने का दर है या इसमें स्प्राउट आ जाता है या मीठापन आ जाता है और दूसरा प्याज फूटना शुरू हो जाती है, स्प्राउट आता है, श्रिंकेज होता है, तो भंडारण क्षमताओं के विकास उसमें सरकारों का योगदान है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया और वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्मों का विकास किया जिनमें कटाई के उपरांत भंडारण के दौरान में जिसमें नुकसान कम होता है, श्रिंकेज कम होता है, लॉस कम होता है, PLW, तो ये किस्मों का विकास भी है। ऐसे रसायनों की पहचान की गई जिनका खड़ी फसल में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई करने के बाद उसमें भंडारण में लेके जाते हैं, तो उससे हमारा नुकसान कम हो जाता है।
5: तो डॉक्टर साहब, क्या जैसे हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरक या जो दवाएं प्रयोग करते हैं इनका भी कुछ प्रभाव पड़ता है?
6: निश्चित रूप से ये माना जाता है भंडारण में अगर हमें होने वाले नुकसान को कम करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना कि खेत में जो उत्पादन हो रहा है वो उच्च गुणवत्ता का हो। जितनी इनिशियल क्वालिटी अच्छी होगी भंडारण के दौरान उसमें होने वाला नुकसान उतना ही कम होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, बैंगन है, टमाटर है, अगर वो कीड़े से ग्रसित है तो वहां पे पानी जा सकता है, सफाई के दौरान ड्राई करने में कमी रह जाती है क्योंकि जब उनको वाश किया जाता है उसके बाद तेज हवाओं का बुछार उसमें की जाती, तेज हवा से गुजारा जाता है ताकि फालतू की नमी उसे हट जाए। लेकिन अगर उसमें कीड़े का आक्रमण है तो वहां पानी भर जाता है, फिर वो भंडारण में जाता है तो वहां पे वो सड़ना शुरू हो जाता है, दो चार आसपास के टमाटर हैं उनको खराब कर देता है। इसी तरह से बैंगन में होता है, ऐसे ही दूसरी फसलों में भी होता है। तो ये खेत में उत्पादन के दौरान भी हमें सुनिश्चित करना कि खेत से जो भंडारण के लिए उत्पाद जाए वो उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। जैसे हम बात करें बैगन की, जैसे हमारे किसान भाई तुड़ाई करते हैं और तुड़ाई करने के बाद हम किसान भाइयों को बताते रहे हैं कि आप तुड़ाई करने के बाद फलों को छायादार जगह में ढेर लगाओ।
5: तुड़ाई का समय और तरीका ये भी प्रभावित करता है?
6: बिल्कुल करता है। तुड़ाई का समय अगर हम तेज धूप की अवस्था में, मतलब दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच में तुड़ाई करते हैं जब तापक्रम सबसे अधिक होता है, तो ऐसे फलों को अगर हमने तोड़ करके सीधे बोरों में भर दिया, उनको पैकिंग कर दिया, तो उसमें हीट जो होती है वो इतनी होती है कि उससे रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती है। जब उसका सांस लेने की दर बढ़ती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, तो उसके अंदर का जो पानी है वो श्रिंकेज होता है और जो फल 5 दिन तक बाजार के लिए सुरक्षित रहना है वो 3 दिन में ही खराब हो जाता है, उसकी मार्केटिंग वैल्यू कम हो जाती है, ये भी एक नुकसान है। तो अब तुड़ाई का समय क्या है, हम किसान भाइयों को सिफारिश करते हैं भाई अगर तैयार बैगन है दूसरे दिन तीसरे दिन आप तुड़ाई करते हैं तो आप दोपहर के 3 बजे के बाद तुड़ाई शुरू करिए या प्रातःकाल में सुबह 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक तुड़ाई करिए। और तुड़ाई करने के बाद फलों को आप छायादार जगह पे, जहां छाया हो, हवा हो, पंखा हो तो और बेहतर है क्योंकि किसान खेत में पंखे तो होते नहीं लेकिन वहां पे पेड़ होते हैं, तो ऐसी जगह पे साफ जगह नीचे अच्छा उसमें प्लास्टिक डाल के या कपड़ा डाल के उनको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उनको 2-3 घंटे के लिए ऐसी जगह पे रखें ताकि उसकी जो लेटेंट हीट है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे शिमला मिर्ची हो, लौकी हो, तुरई हो, ये बात सब पे लागू होती है, तो उसका जो एक्स्ट्रा हीट है वो डिफ्यूज हो जाएगी, हट जाएगी। तो जब उसके बाद उसको फिर श्रेणीबद्ध करेंगे, उसमें जो छोटे फल हैं, कई फल बड़े हो जाते हैं या कई फल कीटग्रस्त हो जाते हैं, उनको निकालते हैं। ये भी हमारे भंडारण क्षमता को प्रभावित करता है। अगर हम बढ़िया गुणवत्ता का, एक रूपता का फल भंडारण में लेके जाएंगे कटाई के बाद, तो उसका धीरे धीरे होने वाला जो श्रिंकेज है, PLW जिसको हम बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट, वो भी कम होता है और बाजार तक जाते जाते उसकी चमक दमक बनी रहती है और किसान को उसके दो पैसे ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम उसको ग्रेडिंग करने के बाद, जब उसको हम पैकिंग करते हैं, अगर हम उसको पानी में से डुबो के निकाल दें, एक हम कई बार कहते हैं कि भाई फलों को लाए तोड़ के और सीधा जितना बोझ है उसको, ट्यूबवेल होती है, पानी होता है, पानी चलता रहता है, उसमें 5 से 10 मिनट के लिए गट्ठर को उसमें डाल देते हैं, तो उसकी जो हीट है वो निकल जाती है, हीट निकल जाती है, उसके बाद उसको छायादार जगह में फैला के रख देते। ऐसी चीजें हैं जो किसान भाई अपने खेत में अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, उससे निश्चित रूप से भंडारण क्षमता में प्रभाव पड़ता है।
5: कई चीजें हैं डॉक्टर साहब, जैसे टमाटर अलग तरीके से तुड़ाई होती है, आपके बैंगन है, लौकी है, कद्दू, ये तो बेलदार उसमें लगते हैं, तो इसकी कटाई होती है कि जिससे उसके जो बेल है उसको भी प्रभावित न कर सके, क्या इसकी जो तुड़ाई का तरीका है?
6: बिल्कुल,
5: तुड़ाई फल खराब होने,
6: ये कई बार जो हमारे श्रमिक तुड़ाई करते हैं तो झटके से तुड़ाई करते हैं
5: जी,
6: जब झटके से तुड़ाई करते हैं तो खास तौर से बेल वाली सब्जियां हैं या टमाटर भी हैं, उनकी या तो शाखाएं टूट जाएंगी या फल का डंठल उससे हट जाएगा। बैगन के अंदर जो चमक दमक है उसके डंठल के साथ है, उसके ऊपर लगे कैलिक्स के पास है
5: जी।
6: टमाटर में वो अगर रहेगा तो उतना शानदाई है उसका, हालांकि किसी किसी किस्म में वो अटैच रहता है और उससे भी आकर्षण बढ़ता है, फल लाल होगा और उसके ऊपर कैलिक्स जो अटैच है वो हरा रंग का रहता है, लेकिन ज्यादातर किस्में ऐसी हैं कि जो बिना कैलिक्स के ही होती हैं, लेकिन बैगन में कैलिक्स जुड़ा होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू को प्रभावित करता है। उसकी कटाई जो है ज्यादातर हम देखते हैं किसान भाई खेतों में अपने हाथों से तुड़ाई करते हैं, और हाथ से तुड़ाई करते हैं बैगन में, मिर्ची में, किसान भाई या महिलाएं जो विशेष रूप से काम करती हैं वो हाथों में कोई कपड़ा भी नहीं बांधती ताकि उनके हाथों में के जो पत्तों से लगने वाली जो रोएं हैं वो उनकी स्किन के संपर्क में ना आए, तो वो सावधानी से काम नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई 5 रुपए का हमने बचत कर लिया। तो अगर वो नहीं खरीदना चाहते तो कपड़े के ऐसे थैलियां बनाई जा सकते हैं जो तुड़ाई करते वक्त किसान भाई उसको यूज कर लें, और उसको चाकू से काटें या स्केटियर से काटें, मतलब कटर से काटें
5: जी।
6: भिंडी तोड़ने के लिए विशेषकर कई चीजों का विकास, क्योंकि भिंडी में सबसे ज्यादा चुनौती आती है, लाल पकी मिर्च होती है जब उसकी तुड़ाई करते हैं तो उसमें बहुत चुनौती आती है कि वो पंजेंसी होती है और वो जो है हाथों के लग जाती है, तो जो श्रमिक काम करते हैं खेत में उनको बड़ा ईचिंग होता है, अनहाइजीन हो जाता है, तो ऐसे में कटर का इस्तेमाल करते हैं। कटर में हमें जैसे लौकी के ऊपर है, लौकी का डंठल कम से कम 2 से 2.5 इंच के ऊपर से कटाई करनी है, ऐसे ही करेले में करनी है, और कद्दू में भी हमें 1 इंच के ऊपर से कटाई करनी है, हमें ऐसे झटके से तोड़ना नहीं है, तोड़ते हैं तो उसका जो रस होता है, ऊज होता है, वो निकल जाता है और वो सूखने के बाद लाल हो जाता है, तो फल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, चाहे वो लौकी हो, चाहे सीताफल हो या हमारी ककड़ी हो, खीरा भी है, तो ये सावधानी हम रखते हैं। और कई बार क्या होता है कि किसान बहुत तोड़ता है लौकी के विशेष रूप से या सीताफल जहां ज्यादा उपज होती है तो तोड़ करके फेंकता है, जगह जगह ढेर बनाता है फिर इकट्ठा करता है, इससे क्या होता है जब हम तुड़ाई करके फलों को ऐसे फेंक के खेत में इकट्ठा कर देते हैं तो मिट्टी लगती है उसमें, चोट लगती है, ब्रूजिंग होती है, बाद में वो वहां से काला पड़ जाता है, तो बाजार में ऐसा फल जाएगा तो उसका मूल्य भाव कम मिलेगा, पहले मंडी में उसका मूल्य भाव कम मिलेगा, मंडी में सस्ते दरों पर फिर उपभोक्ता उसको लेने में, कुल मिलाकर के तुड़ाई किस प्रकार से करें वो हमारा काफी हद तक इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसमें नुकसान ना हो।
5: बहुत से किसान भाई मशरूम की भी खेती करते हैं तो उसकी चुनाई कैसे?
6: मशरूम एक बहुत ही स्पेशल क्रॉप है जिसमें हमारे अधिकतर किसान निरंतर जो लोग करते हैं उनको इस चीज का अनुभव है कि हमें बटन का साइज कितना होना है और किस अवस्था पे तोड़ना है, क्योंकि मशरूम तो सुरक्षित आकृतियों के अंदर है तो उसमें तुड़ाई के समय का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुड़ाई का, कटाई का तो समय, क्योंकि वो क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर है, तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे बटन का बाजार के मांग के आधार पर तैयार हो गया। तो मटर को भी बड़े जेंटली निकाला जाता है, अगर बहुत फोर्स के साथ निकाल दिया तो क्या होता है कि उसके साथ जो छोटे बटन्स हैं वो भी निकल जाते हैं, उससे किसान को नुकसान होता है। तो उसमें भी हम ये किसान भाइयों को बोलते हैं कि भाई आप जब तैयार बटन है उनको निकालते हैं तो वहां आप ऐसे नुकीली चीज का इस्तेमाल करिए, कटर का इस्तेमाल करिए, ताकि आप उसको सरफेस से काट सकें, आपका भार में भी कमी ना हो और जो साथ में दूसरे बटन्स ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि जब फसल तैयार होनी शुरू होती है ये हर 5-6 दिन के बाद या तीसरे दिन इसकी तुड़ाई होती रहती है। बटन तैयार हुए, निकाले और छाया में रखे, फिर उसको वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करके उसका फिर पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं, और तब वो कोल्ड कंडीशन में ही जो हमारी रेफ्रिजरेटेड वेन है उसी से ही बाजार के लिए लेके जाते हैं।
5: तो डॉक्टर साहब अब बात करते हैं पैकिंग की, क्योंकि पैकिंग करने से भी इनकी भंडारण क्षमता बढ़ती है।
6: निश्चित रूप से पैकेजिंग की हालांकि काफी सुधार हुआ है, पहले हम देखते थे अब से 20 साल 30 साल पहले किसान भाई अपनी सब्जियों को ज्यादातर गट्ठर बनाते थे,
5: बोरियों में भर के
6: बैंगन लौकी बोरियों में भर के आते थे और बोरियां भरी और धड़ाम से फेंक दी और उसका चिंते गए, गाड़ी में भरते वक्त ऊपर चढ़ रहा आदमी उनको लगा रहा तो उसे बड़ा नुकसान होता था, उसे गुणवत्ता खराब होती थी, भंडारण क्षमता भी उससे खराब होती थी। तो अभी क्या विकास हुआ, इसमें मैं विकास ही कहूंगा कि वो जो जूट वाले बोरे थे या गट्ठर का सिस्टम आज ऑलमोस्ट पूरे देश में बंद हो गया, अब उसका स्थान ले लिया प्लास्टिक के बैग्स ने और क्रेट भी आए। और उन दोनों का फायदा क्या हुआ कि करेट किसान जब लेके आता है तो उसे दोबारा मंडी में ला करके फिर खाली करेट ले जाने का मानसिक दबाव बढ़ता है या खर्चा बढ़ता है
5: जी।
6: तो किसान उस करेट सिस्टम से भी हट गया, हट करके वो प्लास्टिक के HDPE बैग्स आ गए। तो वो लौकी है, तुरई है, भिंडी है, करेला है, आप देखेंगे पूरे देश की सारी सब्जियां जूट के बैग में नहीं आती, कपड़े के गट्ठर में नहीं आती, करेट में कुछ आती हैं। मशरूम आएगा करेट में ही आएगा, टमाटर करेट में आएगा, क्योंकि वो डेलिकेट चीज है, अगर वो ऐसे बोरों में भर के भेजेंगे तो वो सारी का सारा नुकसान होने की संभावना। तो पैकेजिंग में आज प्लास्टिक का बड़ा रोल है, प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक की क्रेट्स। तो किसान उसको 10 किलो की, 15 किलो की, 20 किलो की करेट जो आसानी से हैंडल होती हैं और उनको इस प्रकार से रखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जब करेट रखी जाती है तो फल दबते नहीं है, उसमें फलों के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ा। तो ये जो विकास हुआ हमारा पैकेजिंग में, चाहे वो प्लास्टिक के HDPE बैग्स हैं या हमारी प्लास्टिक की कैरेट हैं, इन्होंने हमारे लॉस हैं। हमने कई अध्ययन किए, PhD करने के बाद मुझे 2.5 साल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में डॉक्टर एस के राय काम करते थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो हम नींबू में, अंगूर में, संतरे में, किन्नू में, हमने कई ऐसे, और आलू प्याज में जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में काम करते थे। तो यही हम अध्ययन किया कि बोरों में भर के रख दिया, जूट के ऊपर बोझ करते गए, करेट में रखा, तो करेट में रखा तो कम से कम 8-10% हमारा नुकसान कम हो गया। तो इस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का अगर फायदा लेते हैं तो उसके हमारे कटाई के उपरांत जो नुकसान होते हैं उनकी मात्रा में कमी आती है, गुणवत्ता बेहतर बनी रहे।
5: तो डॉक्टर साहब अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि जो सब्जियों में पोषण ह्रास कम से कम हो तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
6: देखिए, एक तो जो हमारे उपभोक्ता हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनको तो मैं कहूंगा कि अपने जो पत्तेदार सब्जियां विशेषकर, उनका अपने आप स्वयं उत्पादन करें, अपने खेत में उत्पादन करें, ट्यूबवेल गार्डनिंग करें, और ताजी सब्जियों का पालक है, धनिया है, मिंट है, मरवा है, या साग सरसों है, ये चीजें, चने का साग है, हालांकि शहर के लोग भी कर सकते हैं, किचन गार्डन के रूप में कर सकते हैं, अपने गमलों में अपने परिवार की आवश्यकता के अनुरूप अगर छत है या बालकनी में कम से कम पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि न्यूट्रिशन के बहुत अच्छे स्रोत हैं, इनको उगा सकते हैं और उगाया जा सकता है। कठिनाई होती है लेकिन उनका जब स्वाद आता है तो एक विशेष अनुभव होता है, गुणवत्ता युक्त सब्जी हमें खाने के लिए मिलती है।
5: जी डॉक्टर साहब, आपने आज काफी विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से सब्जियों का प्रबंधन किया जाए और उसका कटाई और भंडारण के बारे में जानकारी दी, और निश्चित तौर पे इससे किसान भाई फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे सब्जियों का सुरक्षित प्रबंधन तुड़ाई से भंडारण तक।
4: और प्रतिमा, देखिए जानकारी तो हमें मिल गई है और आप सुनते हैं जयवीर की आवाज में ये रागिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे जयवीर की आवाज में रागिनी। और देखिए रजनीश, ये इस तरीके की जो रागिनी होती हैं कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति को भी इंगित करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कृषि की बातों के साथ साथ हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। और अब हम जान लेते हैं मौसम का हाल।
0: बिल्कुल। और देखिए मौसम की अगर हम बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अगर वर्षा की बात करें तो बारिश का कोई अनुमान नहीं है, यानी कि मौसम शुष्क रहेगा।
1: ये तो रहा मौसम का हाल। और अब जान लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह। इस मौसम में किसान धान के ब्लास्ट रोग का आक्रमण होने की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी आंख जैसा धब्बा, जिसका अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है।
0: और साथ ही किसानों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। बीजों को कवकनाशी कैप्टान या थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। साथ ही हमारे किसान भाइयों को सलाह है, इस मौसम में फसलों और सब्जियों में दीमक का प्रकोप होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अतः किसान भाइयों को सलाह है कि फसलों की निगरानी करते रहें।
1: और प्रतिमा, अब बात कर लेते हैं कि आज आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के क्या भाव रहे।
0: सब्जियों में आलू की बात करें तो इसका मूल्य रहा 15 से 18 रुपए प्रति किलोग्राम और प्याज का मूल्य रहा 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं टमाटर की बात करें तो ये रहे लगभग 35 से 40 रुपए प्रति किलो। और अगर हम कुकुम्बर यानी खीरा की बात करें तो इसका मूल्य रहा 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: फलों के भाव भी बता देते हैं। सेब का भाव रहा 100 से 120 रुपए किलो, वहीं केला बिका 25 से 30 रुपए किलो। अमरूद का भाव है 65 से 70 रुपए प्रति किलो और वहीं पपीते का भाव चल रहा है 30 से 35 रुपए प्रति किलो। तो ये तो थे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव।
0: और रजनीश, देखिए हमारे कार्यक्रम में तमाम जानकारियां भी शामिल होती हैं और इसीलिए हमें भी इंतजार रहता है कि हमारे किसान भाई बहन अपनी फीडबैक यानी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं।
1: हमारा ईमेल है feedback@gmail.com।
0: तो किसान भाई बहनों, सही जानकारी, परिश्रम, सही समय पर किया गया कार्य हमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ साथ चेहरे पर मुस्कुराहट भी देता है।
1: तो इसी मुस्कुराहट के साथ हम अपने किसान भाई बहनों से लेते हैं विदा। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इस वक्त शाम के 7:35 होने वाले हैं। आइए लुफ्त उठाते हैं चंद गजलों का। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली गजल मिताली और भूपेंद्र सिंह के युगल सुरों में।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये गज़ल, और इस गज़ल के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: रात के 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक

0: सेवा वैन को रवाना किया। कहा इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में किया शुभारंभ। औषधि नियंत्रण विभाग ने नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा, सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व गैंडा दिवस पर गैंडों के संरक्षण का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क, नालियों और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित थे।
1: नजफगढ़ की 7 अनधिकृत कॉलोनियों में करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से 10 अन्य विकास कार्य पहले से प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 58 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से नजफगढ़ की कॉलोनियों में सड़कें बेहतर होंगी, जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी और बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ हजारों परिवारों का जीवन और सुगम होगा।
2: दिल्ली की रीडेवलपमेंट होने से लोगों का जीवन जो है सुविधाजनक होगा। आने वाले समय में ये रजिस्ट्री की फीस भी अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं लगेगी। एक एक व्यक्ति को अपने मकान का स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा।
1: वहीं मीडिया से बातचीत में परवेश साहिब सिंह ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 843 करोड़ रुपए की लागत से कुछ विकास कार्य पूरा कर लिया गया है, वहीं कुछ कार्य अलग अलग चरणों में जारी है।
3: आज 843 करोड़ रुपए के काम या तो हो रहे हैं या भी होने वाले हैं। हर जगह पर अच्छी सड़क, अच्छी ड्रेन, नालियां, गलियां, ये सारी सुविधाएं अभी होने वाली हैं।
1: उन्होंने क्षेत्र में शुरू हुए विकास परियोजनाओं को लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए रजनीश शुक्ला।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नई दिल्ली क्षेत्र के पुनर्विकास और दिल्ली की जल व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। इसी संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर चुनिंदा क्षेत्रों की पुनर्विकास योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के साथ साथ नई दिल्ली की विशिष्ट विरासत और पहचान को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सज्जन सिंह यादव ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान जल आपूर्ति, नालों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन, नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य, सेप्टेज सफाई मशीनों की तैनाती और यमुना के पुनर्जीवन सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि आवश्यक सुविधाएं उनके क्षेत्र तक पहुंचे। इस अवसर पर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे श्रमिकों को पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी दिहाड़ी का भी नुकसान नहीं होगा।
4: हमारे मजदूर भाई बहन जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की एक सुविधा देंगे। इसीलिए हमारे मंत्रालय ने इस काम को जनता की सुविधा के अनुसार पूरा प्लान किया और आज जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या लेबर चौक पे पाए जाते हैं, ये सारी वैन हर डिस्ट्रिक्ट में एक वैन हम देंगे। ऐसी 13 वैन चलेंगी और वो उन जगहों पे जाएंगी जहां पे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर अपना काम करते हैं।
0: वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि इन मोबाइल वैन्स के माध्यम से श्रमिकों को उपलब्ध योजनाओं और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी।
5: ये वैन उनके कार्यस्थलों पर जाएंगी और वहीं पर इनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा।

0: रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी किया जाएगा। किसी भी हमारी श्रमिक बहन भाई से संबंधित योजना उनके लिए अप्लाई करने का काम भी इन्हीं वैन के माध्यम से हो जाएगा और उनकी जानकारी देने का काम भी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। नीदरलैंड्स और जर्मनी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में भागीदार देशों के रूप में शामिल हैं। ये आयोजन भारत और विदेश के शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और युवाओं के साथ साथ वैश्विक जल पक्षकारों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सतत जल प्रबंधन में वैश्विक विशेषज्ञता के आदान प्रदान को सक्षम बनाना है। उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन और सभ्यताओं का आधार है। उपराष्ट्रपति ने इसके विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
3: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
1: इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल संरक्षण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: आकाशवाणी समाचार से एक विशेष बातचीत में भारत में नीदरलैंड्स की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स ने कहा कि जल सहयोग भारत नीदरलैंड्स रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
5: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 96 घंटे में 17 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने इन मामलों में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इनमें 8 मामले वाणिज्यिक मात्रा और 9 मामले मध्यम मात्रा से जुड़े हैं। पुलिस ने लगभग 45 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। एक अन्य मामले में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के आवासीय परिसर से 10 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। औषधि नियंत्रण विभाग ने भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए कीमत की नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नकली दवाओं के माध्यम से लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेबीज एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा बीमारी है, इसलिए रेबीज वैक्सीन की गुणवत्ता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विभाग के अनुसार जांच में सामने आया है कि जब्त वैक्सीन का संबंध कानपुर की एक एजेंसी से है। 120 नमूने जांच के लिए कस्टडी में लिए गए हैं, वहीं बाकी 361 यूनिट और खरीद संबंधी चालान जब्त किए गए हैं। मामले में वैक्सीन की आपूर्ति और पूरे गिरोह की जांच जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने राजधानी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के दौरान लोगों को मिल रहे नोटिस से संबंधित मामलों का जवाब दिया है। श्री सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मतदाता सूची या दस्तावेजों में किसी तरह की कमी या जानकारी के अभाव की स्थिति में निर्वाचन आयोग संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है और उससे आवश्यक जानकारी मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने का मतलब मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाना नहीं है, बल्कि संबंधित मतदाता को अपने दस्तावेजों या विवरण से जुड़ी कमी को स्पष्ट करने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने वाले मतदाता 30 सितंबर तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO के समक्ष अपना जवाब दे सकते हैं।
6: कोई भी नागरिक को, कोई भी वोटर को अगर ये लगता है कि उसका नाम SIR प्रक्रिया से छूट रहा है, तो उसको पूरा चांस भी दिया जाता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को पूरा करके नोटिस का जवाब भी दे। 29 अक्टूबर तक ये पूरा स्क्रूटनी चलेगा, 4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उसके बाद भी अगर किसी का नाम नहीं आता है तो भी वो अपना नाम, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत समेत दुनिया भर में आज विश्व गैंडा दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गैंडों की 5 शेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष का विषय है 5 शेष गैंडों की प्रजातियों को संरक्षित रखें। इसके अंतर्गत गैंडों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, शिकार रोकने और गैंडों के सींगों के अवैध व्यापार पर नकेल कसने का आह्वान किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व गैंडा दिवस पर गैंडों के संरक्षण का आह्वान किया है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि राजधानी में आज से नमो सेवा की अनकही कहानियां अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग तथा साहित्य कला परिषद की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली में लगभग 1,250 स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात्रि के 8 बज चुके हैं और आइए प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए श्रोताओं, गीतों के संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म परदेश के इस गीत के साथ सोनू निगम की आवाज में।

0: परदेस फिल्म से सुन रहे थे ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, हमराज फिल्म से उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में फिल्म बेवफा से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मलिका। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म जीत से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

आप सुन रहे थे जीत फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। तो आइए सुनते हैं अगला गीत सनम बेवफा फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मलका में आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल सुरों में।

श्रोता, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गीत मालिका यहीं पर समाप्त होता है। तब तक लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100

0: नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता, पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी20 को

0: पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी. दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है. श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया. उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी. उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है. नई दिल्ली में आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है. उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी. गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है. दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है. 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं. उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है. इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है. इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है.
3: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है. 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है.
4: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे. आज जैम पोर्टल जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके.
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जैम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है.
5: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है. और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं.
3: जैम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है. सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों,

0: स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जिम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medals tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
4: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
3: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards.
5: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. Aaj hum Ekta Nagar, jahan Sardar Sahab ki world's tallest statue hai, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। अब अगली बार वील गो टू वन मोर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। आई एम गिविंग अ कॉल टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन योर स्टेट, टेल अस व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू विल मेक इन इट। योर डेस्टिनेशन विल बी सेलेक्टेड एंड वील हैव द नेक्स्ट राउंड ऑफ NFA इन द सेलेक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
3: At the ceremony, veteran Kannada actor Anand Nag received the prestigious Dadasaheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. We have a report.
6: In a historic ceremony held against the grand backdrop of Statue of Unity in Ekta Nagar, Gujarat, President Draupadi Murmu honored a total of 92 awardees from the film industry across the country. Legendary actor Anand Nag was honored with the prestigious Dadasaheb Phalke Award for the 2024 for his outstanding contribution to Indian cinema spanning over 5 decades. In the feature film section, the political thriller film Article 370 bagged the Golden Lotus Award for the Best Feature Film. Director Randeep Hooda received the Best Debut Director Award for Swatantra Veer Savarkar, while Nag Ashwin Singareddy's science fiction film Kalki 2898 ED won the award for the Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment. Rajkumar Periyasamy received the Best Direction Trophy for the Tamil movie Amaran. The Telugu film 35 Chinna Katha Kadu took home the Best Children's Film Honor. In the acting categories, the Best Actor in a Leading Role Award was jointly presented to veteran actor Mammootty for Brahmyugam and Karthik Aryan for Chandu Champion. Yami Gautam won the Best Actress in a Leading Role Award for her performance in Article 370. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
3: Speaking at the ceremony, legendary actor Anand Nag thanked everyone who supported him throughout his acting journey.
7: I am very lucky to got this highest award in films, Dadasaheb Phalke Award, at the hands of Srimati Murmuji. And I am very grateful to all the people who have been with me throughout these 55 years of being an actor. This award does not belong to me alone. It also belongs to every producer, director, dialogue writer, songwriters who have worked with me tirelessly. The award belongs to millions of people who have opened their hearts and minds to my characters over the last 5.5 decades.
3: This is Akashwani giving you the news.
8: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
3: India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security.
9: We strongly condemned the attacks from Pakistan, the airstrikes which were launched on

मोहन नायडू ने अगले मरहले के विजन को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि स्कीम को मजीद 10 साल के लिए तोसी देने से हुकूमत का मकसद मुल्क में 100 नए हवाई अड्डे और 200 जदीद हेलीपैड्स तामीर करना है। जनाब नायडू ने इस बात को उजागर किया कि 2014 में शहरी हवाबाजी के शोबे में तकरीबन 30 लाख मुलाजमतें थीं, जो बढ़कर आज तकरीबन 77 लाख हो गई हैं और 2040 तक इनकी तादाद 2.5 करोड़ होने की तवक्को है। जनाब नायडू ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत पिछले 10 वर्षों में 90 से ज़्यादा हवाई अड्डे तामीर किए गए हैं, जिससे तकरीबन 1.54 करोड़ मुसाफिरों को आरामदेह फजाई सफ़र की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस तकरीब में एरोडोम डेवलपमेंट के लिए चैलेंज मोड पोर्टल भी शुरू किया गया और उड़ान रूट की बोली के अगले मरहले के लिए स्कीम दस्तावेज जारी किए गए। गेंडे के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए एक सींग वाले गेंडे नहायत अहम हैं और वो तमाम लोग एहतराम के काबिल हैं जो इसके तहफ्फुज में लगे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आसाम दुनिया में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडों में 80% का घर है और उनके शिकार को कम करने के लिए काजीरंगा की कोशिशें काबिले सताइश हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD ने कहा है कि कौमी राजधानी खत्ते के ज़्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और बारिश का इम्कान नहीं है। भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में मुसलसल दूसरी मर्तबा सोने का तमगा जीतकर अपनी बरतरी बरकरार रखी है। भारत की टीम ने आज जापान के निशीन में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 147 रन से हराया। इन एशियाई गेम्स में यह भारत का पहला सोने का तमगा है। अभी तक भारत ने कुल 7 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर ख्वातीन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। भारत की मर्दों की बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल्स में मेज़बान जापान की टीम को हरा दिया और इस तरह उसने एक और तमगा यकीनी बना लिया है। भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अता किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मनुष्यात के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मनुष्यात की गैरकानूनी तजारत को ख़त्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड्स तामीर करने का हदफ रखा गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय ख्वातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا.

咱宽。

0: आत्मय भाव तारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों

0: बढ़ चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैन सिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Kartik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security. Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade poses a serious threat to the country and the world. Inaugurating the 2-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and Union Territories in New Delhi yesterday, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi yesterday met Sri Sri Vishwaprasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adokshara Matha Udupi along with other dignitaries in New Delhi. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishvesha Tirtha Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishvesha Tirtha Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideas. At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue, reasserting its continental dominance, clinched a second successive gold medal at the sporting event by thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final admission. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म पतीता से, जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत से पिरोया है शंकर जयकिशन ने। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में ये गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और अगला गीत जो आप तक आने वाला है वो है फिल्म आर पार से। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत ओपी नैयर ने दिया था। आइए सुनते हैं गीता दत्त के स्वर में ये गीत।

और अब पेश है 1991 में आई फिल्म अलबेला से अगला गीत, लता मंगेशकर, चितालकर व अन्य आवाजों में रजिंदर कृष्ण के लिखा गीत है और संगीत सी रामचंद्रन ने दिया था।

आपका कोई दोस्त है, मित्र है, वो आपके लिए कोई कुछ काम कर दे, तो आप उसको क्या कहेंगे? धन्यवाद। और कोई आपके बहुत खास दोस्त हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे जब आपके लिए वो कुछ काम कर दें, आपकी कोई सहायता कर दें? उनको भी आप दिल से धन्यवाद करेंगे, लेकिन मस्ती में आप कह सकते हैं कि एहसान तेरा है मुझ पर। तो समझ गए आप मैं कौन सा गीत आपको सुनवाने वाली हूँ? जी हाँ, फिल्म जंगली से आ रहा है, एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये खैर मजाक की बात है, पर हम इस गीत को सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के लिखे बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। अगला गीत फिल्म अमर प्रेम से आपको सुनवाने जा रहे हैं, लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत आर डी बर्मन साहब का। आइए सुनते हैं, रैना बीती जाए।

0: अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
1: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ।

अब ये गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से किशोर कुमार की आवाज़ में, अनजान ने इस गीत को लिखा था और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया है।

और अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने वाले हैं, जो आपके और हमारे दिल की बात है। जी हाँ, बोल हैं अभी ना जाओ छोड़कर, फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और साथ में आशा भोसले। साहिर का लिखा गीत है, संगीत से पिरोया है जयदेव ने। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: मध्य रात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुएल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। ये समझौता श्री ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की घोषणा के कुछ दिन बाद हुआ है। समझौते के तहत ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में ही रहेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने व्यापार संपर्क मंच का भी जिक्र किया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां और पार्श्व गायिका कृष्णा मुखर्जी का आज मुंबई में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यशराज फिल्म्स ने परिवार की ओर से निजता की अपील की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला

0: Earlier, Sakshi Chaudhary entered the pre-quarters. In men's cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating hosts Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs-a-side one-off T20 international match at Sano yesterday. The Indian Meteorological Department has issued red alert for extremely heavy rainfall over isolated places in Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. For Delhi, IMD said the national capital will witness mostly clear skies with no rain. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 2:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। जी हाँ, और मिलकर हम आनंद लेते हैं ठीक 3 बजे तक। तो चलिए निकल चलते हैं इन गीतों के सफर पर और आनंद लेते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार समाधान तलाशना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। नेहरू तारामंडल, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी इराटोस्थनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य अनेक परछाइयां एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यह समय है कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गजलों और गीतों के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी गजलें, और गजलों के इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं एक से बढ़कर एक गजल गायकों से। ऐसे ही एक गजल गायक हैं जिन्हें गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है, और वो हैं जगजीत सिंह। जी हाँ, आइए सबसे पहले सुनते हैं ये प्यारी सी गजल जगजीत सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये गज़ल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की मधुर आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये दो गज़लें उनकी पत्नी चित्रा सिंह की मधुर आवाज़ में।

इसी के साथ श्रोताओं, गजलों और गीतों के कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल हरिहरन की मधुर आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर सन 2026। सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुनेंगे। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे सबसे पहले भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 57। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप हिंदी समाचार सुनेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर समय होगा कार्यक्रम गीतों भरी का। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं उर्दू समाचार। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर गंगा। ये समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का और 9:15 पर आप सुनेंगे साइंस मैगजीन। सुबह 9:30 पर समय होगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का और 10 बजे आप हिंदी समाचार सुन सकते हैं। 10:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे और 10:10 पर समय होगा कार्यक्रम आपकी पसंद का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वो वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

0: भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। मिजोरम के लॉन्गतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO संस्था द्वारा FAO 100 Women Heroes and Agri-Food Systems and Rural Development के रूप में सम्मानित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara in Gujarat today. During the ceremony, the President will confer degrees on more than 12,600 students. She will also award gold medals to students for their academic achievements in undergraduate and postgraduate programs. Later, President Murmu will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of the Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, she will also inaugurate the Spiritual Awakening for World Renewal project and virtually launched the Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. The President is on a 3-day visit to Gujarat. Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity in at Ekta Nagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है।

यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें, हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती है। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए